0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासवंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सर्वप्रथम सुन लेते हैं ये मातृवंदना।

समूह स्वर में ये मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी वीरेंद्र मिश्रा की और अब सुनिए ये निर्गुण भजन।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में ये श्री कृष्ण भजन अभी आपने सुना, और इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही समय पश्चात आप सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर होगा अनुराधा पोडवाल का। समय होगा सुबह के 6:30। भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे प्रातः 6:40 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संस्कृत में समाचार आप सुनिएगा सुबह 6:55 पर। सुबह सुबह ये कार्यक्रम आप सुनिएगा प्रातः 7 से। कृषि संकेत हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर आप सुनिएगा प्रातः 7:20 से। संगीत सरिता हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:50 पर।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात हम अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:15 पर। बाल सभा ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 से। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 10 बजे से। फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 10:05 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, समय होगा 2:10। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार 2:15 पर। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 5 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं आप सुनिएगा शाम 5:30 पर, और शाम 5:40 पर सुनिएगा संगीत सरिता।

सदाबहार गीत ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर, शाम 6:45 पर आप सुनिएगा लोक रंग। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से, प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:10 पर। लोक रंग ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ग्राम सभा हम अनुप्रसारित करेंगे शाम 7:30 पर।

सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8 बजे से। डगर विकास की ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम का विषय होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये कार्यक्रम आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8:15 पर। चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुनिएगा रात्रि 8:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनिएगा रात्रि 9 बजे से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है।

चरितमानस का संगीतमय पाठ। अभी आपने सुनी इसकी 391वीं कड़ी। गायन स्वर था अनुराधा पोडवाल का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: प्यासा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।
6: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: पतंगा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं शमशाद बेगम और चितलकर की, शब्द रचना थी राजेंद्र किशन की और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम गीत।
1: संभाल के गाना पड़ेगा।

देख कबीरा रोया। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना, आवाज थी मन्ना डे की, संगीत था मदन मोहन का और गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र किशन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का सफलता का अपना एक पैमाना होता है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो कोई शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। वहीं कुछ लोग अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को कुछ सकारात्मक देना ही अपनी सफलता मानते हैं। किसी भी तरह की सफलता बहुत मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से प्राप्त की जाती है। अधिकतर सफल लोगों के अंदर कुछ चीज़ें या आदतें एक जैसी होती हैं। आप भी इनको अपनाकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। श्रोताओं, अपनी सोच को बड़ा रखें। बड़े विचार रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। किसी ने कहा है कि बड़ा लक्ष्य तय करने से ज़्यादा खतरनाक होता है छोटा लक्ष्य तय करना। जब लक्ष्य ही छोटा होगा तो हमारे प्रयास भी छोटे ही होंगे। बड़े प्रयासों के लिए बड़े लक्ष्य के साथ बड़ी सोच भी बहुत ज़रूरी है। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर रखने वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आपका काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत, दिमाग की शांति, घर वालों का बहुत सारा प्यार और मित्रों का अपनापन। इनके बिना कोई भी व्यक्ति सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुनिया के अधिकतर लोग आजीविका कमाने के लिए वो काम नहीं करते जिसे वो पसंद करते हैं। कुछ लोग तो जिस काम को पसंद नहीं करते वही कर रहे होते हैं, लेकिन सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप वही काम करें जिसे आप पसंद करते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद को पहचानें और कोशिश करें कि उसी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाएं। इससे आपको सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। श्रोताओं, सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए विफलता को गहराई से समझने की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में विफलता आए तो घबराने की बजाय उससे सीख लें। कहते हैं कि विफलता से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं हो सकता। कई बार लोग नए विचारों को अपनाने से घबराते भी हैं। सफलता की राह में यह एक बहुत बड़ा रोड़ा है। हमेशा नए विचारों को सुनने, समझने और जो बेहतर लगे उन्हें अपनाने को तैयार रहना चाहिए। नए विचार हमारी सफलता की राह में कई बार आसान भी बनते हैं, क्योंकि सफल लोग चीज़ों को अलग तरह से करने के लिए जाने जाते हैं। सफलता पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है पूरी क्षमता के साथ मेहनत करना और पूरी क्षमता पर भरोसा भी करना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और फिर सफलता आपके हाथों से फिसल भी सकती है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं। ऐसे में सफलता आपके लिए सामने खड़ी मिलेगी और आपसे दूर बिल्कुल नहीं रहेगी। सफलता कभी भी आसान रास्तों पर चलकर नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत सबसे ज़रूरी सामग्री है। इस सामग्री के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद नहीं चख सका है। कई बार आपको अपनी सोच से भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है और उसी के बाद सफलता का मीठा पल प्राप्त होता है। सुबह सुबह में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि संकेत। विषय है गहरी जुताई से लाभ। विशेषज्ञ स्वर है जीपी विश्वकर्मा का।

0: किसान भाइयों, रबी की फसल की कटाई के बाद आती है खरीफ की तैयारी के संबंध में ही किसान जागरूक हो जाते हैं, और जैसे ही तापमान बढ़ता है, खेत में आपने 3 साल से जुताई नहीं की है, गहरी जुताई, तो उसकी जुताई आवश्यक रूप से मन बना लें और उसको करें। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दरारें फटने के बाद जब टेम्परेचर 35 से 40 के ऊपर पहुँचे, तो आप गहरी जुताई खेतों की आवश्यक रूप से करें, जिन्होंने 3 साल के अंदर से गहरी जुताई नहीं की है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो जो आपकी उपजाऊ मिट्टी है वो पलट जाती है और ऊपर आ जाती है, इसके साथ साथ जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट जैसे इल्ली, प्यूपा, लार्वा, ये जो मिट्टी में उसके अंडे दबे हुए होते हैं वो, और इसके फफूंदजनक रोगों के लिए भी मिट्टी जो गर्म होती है तो उससे भी बहुत अधिक फायदा होता है, तो ये सब जो है ऊपर आ जाते हैं और सूर्य की गर्मी से ये सभी जो है अंडे, प्यूपा, लार्वा ये समाप्त हो जाते हैं और अपनी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो आवश्यक है कि हम 3 साल के बाद एक बार आवश्यक रूप से अपने खेत की गहरी जुताई आवश्यक रूप से करें। गहरी जुताई के लिए हम मोल्ड प्लाऊ लें, जो मिट्टी पलटने वाला गहरी जुताई वाला प्लाऊ है उसको ट्रैक्टर से जुताई करें और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है हम खेत की जुताई करें, जिससे सूर्य की किरणें लगातार उसकी घारों में पड़ेगी और मिट्टी में अधिक तपन होगी और वो सभी कीटाणु नष्ट होंगे और भूमि उपजाऊ बनेगी। आवश्यक है कि खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष के बाद हम खेतों की जुताई आवश्यक रूप से करें, खासकर उन खेतों में जहां पर दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, उनके आवश्यक रूप से उन खेतों में जुताई करने से जब वो ढेले बन जाते हैं तो मिट्टी के पलटने से हमारी खेती जो है उपजाऊ बनती है और हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे हमें 20-25% तक इसमें फायदा होता है। सूर्य की तपन का कम से कम 1-1.5 महीने के लिए मिट्टी को मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जितने भी ऊपर जो मिट्टी आ गई है वो पूरी तप जाती है और तपने से उसमें जो ढेले बंधे हुए हैं उनकी कड़ों में क्रिया होती है और वो टूट जाते हैं और उसमें जो भी जो आपका लार्वा है, प्यूपा है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो अपनी फसल कटने के बाद जो कीड़े मिट्टी में दब जाते हैं, जो मिट्टी में अंदर चले जाते हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं और इससे वो सब गर्मी के कारण वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम हर 3 साल बाद निश्चित रूप से खेतों की जुताई करें और ये भी ध्यान रखें कि जैसे ही गर्मी समाप्त होती है और पहला पानी गिरता है तो निश्चित रूप से उस खेत को पाटा चला करके, बखर कल्टीवेटर चला करके सम कर दें, जिससे उसका पानी भी, खेत का पानी भी बह करके और मिट्टी भी बह करके बाहर ना जाए। इसलिए सम होने से उसमें एक बात और होती है कि जैसे ही बरसात लगती है तो ऐसे जितने भी खेतों में जुताई की गई है उन सभी खेतों में जुताई के कारण उसमें जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए खेतों में आवश्यक है कि जुताई आवश्यक रूप से हमें किसानों को करना चाहिए।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था गहरी जुताई से लाभ। विशेषज्ञ स्वर था जीपी विश्वकर्मा का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की है। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुड्डे बेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
3: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी

0: कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। जयपुर जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, CHC और PHC में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर, संकलन व निर्माण अदिति जैन का है, संयोजन और प्रस्तुति है दीपक निषाद की।
1: गागर में सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
1: सागर मंथन।
2: बीते सप्ताह शहर में आयोजित हुई गतिविधियों की जानकारी। डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की भाषा अध्ययनशाला द्वारा आयोजित लिटरेरी फ्यूचर नाउ श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय वक्तव्य का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाषा विज्ञान और पाणिनीय व्याकरण के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। हमसे बात कर रहे हैं हिंदी विभाग से डॉक्टर हिमांशु कुमार।
3: सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। 6 मई को हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया लिटरेरी लेक्चर्स नाउ के अंतर्गत हम लोग आयोजित करते हैं और ये प्रत्येक महीने में 2 बार होता है। अभी इस बार हम लोगों ने जो रूपांतरकारी व्याकरण है जो नोम चॉम्स्की ने अवधारणा दी थी और जो भारतवर्ष में पाणिनी व्याकरण जिसकी अवधारणा से लोग परिचित हैं उसकी तुलनात्मक व्याख्या कैसे हो सकती है, तो इसको लेकर हम लोगों ने डॉक्टर अभिज्ञान द्विवेदी को वक्ता के रूप में बुलाया था और उन्होंने इस पे प्रकाश डाला और उन्होंने ये बताया कि 5वीं-6वीं शताब्दी में पाणिनी ने जो अष्टाध्यायी लिखा व्याकरण के ऊपर जो काम किया, आधुनिक समय में 20वीं शताब्दी में नोम चॉम्स्की ने जो काम किया, उन दोनों व्याकरणों में बहुत समानताएं हैं और उसकी बहुत जरूरत है कि समाज उसको समझे, दुनिया उसको समझे और जाने कि भारतवर्ष में जो भारत की ज्ञान परंपरा है वो बहुत प्राचीन समय से बहुत समृद्ध रही है। किस तरह से पाणिनी जो बात 5वीं-6वीं शताब्दी में कह रहे थे वह बात 20वीं शताब्दी में भी अपनी समता प्रदर्शित कर रही थी, तो इसको लेकर बड़ी उत्कंठा थी लोगों के मन में। लोगों ने कई सवाल भी किए इसको लेकर, खास करके लोगों का यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि इसकी उपयोगिता क्या है और भाषा विज्ञान में अगर इस चीज को हम समझने की और पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो विद्यार्थी इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और इन सब चीजों को हम लोग अपनी को समृद्ध करने के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं। धन्यवाद।
2: डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। हमसे बात कर रहे हैं प्रोफेसर नागेश दुबे।
4: सबसे पहले तो मैं श्रोता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। मैं प्रोफेसर नागेश दुबे, अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रविन्द्रनाथ जी टैगोर जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रगान के रचयिता हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके जन्म जयंती मनाई गई थी। रविन्द्रनाथ जी टैगोर राष्ट्रीयता से और भारत की जो आत्मा है उससे परिचित थे और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य का क्या संबंध है, प्रकृति का सौंदर्य जीवन में क्या महत्व है, इसको दर्शित करती हुई जो गीतांजलि की रचना उसको उस समय को नोबल भी मिला था। टैगोर साहब और गौर साहब जो थे दोनों ही जो है राजनीति में ना जाकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। डॉक्टर गौर ने जहाँ सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली होगी, निश्चित रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे होंगे। उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करके शिक्षा की जगत एक अमूल्य योगदान दिया था। विभिन्न वक्ताओं ने जो है इस आयोजन में भाग लिया था। रविन्द्रनाथ जी टैगोर का जो संगीत है रविन्द्र संगीत और उनकी जो कविताएं हैं उनका वाचन किया। टैगोर जी विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित थे, उन्हें अंग्रेजी सरकार ने भी सम्मान दिया था, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार सम्मानित थे। गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो दोनों जो भारत के अति विशिष्ट सम्मानीय

0: महापुरुष रहे हैं। रवीन्द्रनाथ जी टैगोर जो है वो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति की हमेशा पहचान बनी रहेंगे और उनके जो विचार थे, उनके जो योगदान है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।
1: बुंदेली लोक संस्कृति को संरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुंदेली लोक नृत्य और नाट्य कला परिषद कनेरा देव द्वारा विशेष कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं आयोजनकर्ता संतोष पांडे।
2: हमारा नमस्कार, मैं संतोष पांडे। एक 15 दिवसीय लोक कलाओं के ऊपर वर्कशॉप का आयोजन कर रही है जो बच्चों के लिए निशुल्क रहेगी। प्रथम 5 दिवस लोक नृत्य की हमने कार्यशाला रखी है, द्वितीय 5 दिवस की हमने लोक नाट्य जो हमारी गांवों की जो लोक विधाएं हैं उनके ऊपर आधारित रखी है, और अंतिम 5 दिवसीय पेंटिंग होती है उस पर यह कार्यशाला आयोजित कर रही है। इसमें क्या है, बच्चों के लिए लोक कला, लोक नृत्य, लोक नाट्य एवं पेंटिंग से जो भी बच्चे जिसमें भी रुचि रखते हो आकर के संस्था में सीखें। बच्चों के लिए अपनी लोक संस्कृति अगर सीखते हैं, लोक कला सीखते हैं, थिएटर सीखते हैं या पेंटिंग सीखते हैं, तो उसके आगे चल के हमारे लिए बहुत से क्षेत्र में हमारे लिए वो हमेशा काम आ सकते हैं, और उससे हम अगर आगे बढ़ना चाहें तो हमेशा निरंतर उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
1: शिखर की ओर। श्रोताओं, आज की इस विशेष चर्चा के लिए आपसे अनुरोध है कि कलम और कॉपी या कोई ऐसा साधन अपने साथ जरूर रखें जिसमें आप जरूरी बातें नोट कर सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। मई माह को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दे रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वशिष्ठ।
3: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर वशिष्ठ है। मैं जिला अस्पताल सागर में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट मनकक्ष में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के पूरे कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और टाइम से देखा गया है कि जब इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो उसकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है काम में, फैमिली लाइफ में, सोसाइटी में, वो अच्छी होती है। और जहाँ मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू होती है या उसमें प्रॉब्लम आने लगती है तो इंसान के व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं, उनके काम करने की जो शैली होती है उसमें एक अलग बदलाव देखा जाता है। और अगर इस चीज पे काम ना किया जाए तो आगे जाकर के बहुत सारी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे करके बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे धीरे होने लगती हैं। जब हमारा शरीर बीमार होता है तो लक्षण दिखाता है बुखार के रूप में, पेट खराब होना, सरदर्द होना। पर जब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसमें कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। कोई भी इंसान होता है, रोजमर्रा की लाइफ की बहुत सारी चीजें चलती है जिसकी वजह से उसका मूड कभी कभी खराब हो जाता है, उसका बात करने का तरीका खराब हो जाता है, या वो बहुत जल्दी घबरा रहा है, वो बहुत जल्दी परेशान हो रहा है। ये सारे कुछ मोटे मोटे लक्षण होते हैं जिनके थ्रू हम ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है, इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो रही है। इसीलिए जागरूकता जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी दैनिक जो गतिविधियां हैं उनमें हमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक लक्षण है। अगर हमें घबराहट, चिंता होने लगे, अक्सर तनाव में रहना, वो अगर हो रहा है तो ये एक लक्षण है कि मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है। नींद अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो ये एक मेजर फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ का। कम से कम 6 to 8 hours की स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नींद लंबे टाइम से डिस्टर्ब हो रही है तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है। बहुत सारे जो लोग होते हैं जब वो टेंशन, तनाव में जाते हैं, परेशान होते हैं तो वो नशे वशे का भी सेवन एवन करने लगते हैं, इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। और अक्सर कभी कभी लोग अपने भावनाओं को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। जब वो परेशान चलते हैं तो उनको पता नहीं चलता है उन्हें कहाँ पे क्या रिएक्शन देना है। ये सारी अगर सिचुएशंस हो रही हैं मोटी मोटी तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। अब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि जो एंजाइटी होती है, घबरा जाना। एंजाइटी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं कोई भी ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन आए जो थोड़ा सा उनके लिए अलग होती है तो उसमें वो घबरा जाते हैं। घबराना नॉर्मल चीज है, बट जब घबराहट इतनी बढ़ जाए कि उसकी वजह से आपका काम इफेक्ट होने लगे, आपके रिलेशन इफेक्ट होने लगे तो वो एंजाइटी का रूप लेती है। फिर एक और बीमारी आज के दिन पे जो सबसे ज्यादा को परेशान कर रही है वो है डिप्रेशन।

0: डिप्रेशन एक कंडीशन होती है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जिसमें उदासी दिन पे दिन बढ़ती जाती है। और डिप्रेशन इस समय बहुत ही ज्यादा हमारे देश में देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो भी इससे ग्रसित हैं, एवं जो बच्चे हैं वो भी आजकल डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। होता क्या है, डिप्रेशन में उदासी होने की वजह से जो इंसान है वो बात करना लोगों से कम कर देता है, उसका काम जो होता है, इंटरेस्ट होता है, वो कम होने लगता है, उसकी स्लीप या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, भूख बढ़ जाती है या घट जाती है, वो कटने लगता है। अब होता क्या है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो चाहता है कि कोई उससे आकर के बात करे, मगर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास जो है वो डिप्रेशन से ग्रसित है, हमें उसके व्यवहार को देखना है। आजकल इंसान अपने कोई भी इमोशंस को प्रकट करने के लिए स्टेटस लगाता है। अगर एक इंसान व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा दुख भरे स्टेटस लगा रहा है तो आपको एक बार थोड़ा सा उससे जाके पूछना है, क्योंकि क्या होता है जो इंसान डिप्रेशन में होते हैं वो चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, वो कभी कभी बीच में हिंट देते हैं कि अच्छा ठीक है हम दुखी हैं, हमसे कोई आकर के बात करे। एंड अगर ये स्टेजेस क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इंसान को ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन में कुछ नहीं रखा है जीना, एंड वहां से वो फिर सुसाइड जो होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें। तो जैसा कि आज के टाइम पे हम क्रिकेट में 20-20 मैच देखते हैं, उसी तरीके से 20-20 मिनट का कंसेप्ट है कि 20 मिनट आपको व्यायाम में देना है, डेली एक्सरसाइज देनी है 20-30 मिनट, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो फील गुड जो आपके केमिकल्स होते हैं ब्रेन में उनको रिलीज करती है। जो दूसरा 20 मिनट का आपका स्लॉट है उस स्लॉट में अपनी कोई ना कोई हॉबीज, कोई रुचि जो है उस चीज को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो 20 मिनट आता है तीसरा स्लॉट, इसमें हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, अगर वो अपनी चीजें अपनी इमोशंस को डिस्कस करता रहेगा पॉजिटिव वे में तो मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो बात करने से भी कम होता है। बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 20 मिनट्स के स्लॉट्स हैं आपको अपनी लाइफ में डेली निकालने हैं, डेली इनको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक हो। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें से एक प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। हर एक स्टेट में एक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, जैसा कि अपना मध्य प्रदेश है, इसमें भी जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके तहत हर जिले में एक मन कक्ष बनाया गया है। मन कक्ष आपके जिला अस्पताल में एक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है। मन कक्ष का काम है मानसिक रोग से जो ग्रसित लोग हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, मेडिसिन के माध्यम से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करना, एज वेल एज साइकोलॉजिकल अगर किसी को असेसमेंट की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो कैसे बात करें, या तो उनको लगता है कि हम आमने सामने शायद बात करने में घबराते हैं, तो उसके लिए सरकार ने टेलीमानस की भी एक सेवा बना के रखी है, जिसका नंबर है 1441614416। इसमें आप फोन के माध्यम के थ्रू परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक मनहित ऐप बनाई है, प्ले स्टोर में है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी आप जाकर के क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मेंटल हेल्थ लेकर के वो पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को कोई भी तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यू होती है या उसे कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी पानी है, तो वो आ सकता है मन कक्ष में आकर के, आप अपना इलाज करा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको उसकी मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, थेरेपीज प्रोवाइड कर रही है। जिला अस्पताल सागर में आपका मन कक्ष है, वहां पे हमारी ओपीडी सोमवार से शनिवार 9 से 2 और 5 से 6 चलती है। आप आए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई भी आपके मन में चीज हो उसको लेकर के आकर के आप डिस्कस करें, क्योंकि बात करने से बात बनती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।
1: सागर के मोती।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग के अंतर्गत हम हमेशा ऐसे लोगों को आप तक लाने की कोशिश करते हैं जो अपने कार्यों से समाज में एक सकारात्मक पहचान बना रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमन जैन से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पक्षियों और वन्य जीवों के रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। करीब 15 वर्ष की उम्र से ही पशु पक्षियों के प्रति उनका लगाव बढ़ा और यही रुचि आगे चलकर सेवा और संरक्षण के कार्य में बदल गई। अमन जैन अपने अनुभवों के साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जागरूक और प्रेरित करेंगी। सुनते हैं क्या कहना है अमन जैन का।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम अमन जैन है और लोग मेरे को ओशो नाम से जानते हैं। और मेरी पढ़ाई जो मैंने की है, मैंने 12वीं तक सागर से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने BBA करने देहरादून गया और देहरादून से मैंने अपना बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट करा और वापस अपने घर पे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। इसके साथ में मेरे को वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा शौक था, जंगली जानवर, पशु पक्षी, इनसे मेरा एक अलग ही लगाव रहा है। शुरुआत से ही मेरा सांपों से लेके या कोई भी पक्षी प्राणी हो उससे अलग ही लगाव रहा है। मैं इनके बारे में सीखता गया और करीब 15 साल की उम्र से मैं रेस्क्यू करना चालू कर दिया था। अभी मैं करेंटली 27 ईयर्स का होने वाला हूँ। जो मेरा पहला रेस्क्यू था वो एक फीरल पिजन था, जिसको हम आम भाषा में कबूतर कहते हैं, जो हमारे घर के आसपास में ऑलरेडी मिल जाते हैं। शुरुआत ऐसी हुई थी, किसी ने उसको गन शॉट से मार दिया था। एयर गन का उस टाइम काफ़ी क्रेज़ था, तो किसी ने उसको मार के अधमरा छोड़ दिया हालत में। मैं उसको घर पर उठा लाया, उसका इलाज किया, लगभग 3 से 4 महीना उसकी केयर करी। उसके बाद में जो मेरी एक अटैचमेंट बनी और वाइल्ड लाइफ को या पशु पक्षी को समझने का जो मेरा एक नज़रिया बना, वो बहुत ही अलग था। मैं उसको शब्दों में शायद नहीं बता सकता, लेकिन उसकी शुरुआत मेरी इस तरह हुई कि फिर देहरादून गया। देहरादून में पढ़ाई के साथ में मैंने सांपों को रेस्क्यू करना सीखा, सांपों पे काम सीखा कि क्यों लोग इनसे डरते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हम लोगों ने मिलके कि किस तरीके से सांप हमारे लिए जानलेवा है या हम उसके लिए ज़्यादा जानलेवा हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद में कुछ निष्कर्ष भी निकले और बहुत लोगों को अभी तक हम बता चुके हैं कि किस तरीके से हम जानवरों से ना डरें। और डरने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उनको छेड़ें अकेला, नहीं, जो लोग उनको डरने से मार भी देते हैं, एक बार उनको थोड़ा समझ के देखें। अपन इस पृथ्वी पे इकलौते स्पीशीज़ नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं हैं कि केवल हमारे चलने से ही ये पृथ्वी चलती हो। अगर हम इकोलॉजी को समझें, अगर छोटी छोटी चीज़ें हम आसपास की समझें, तो आज भी खेत बगीचे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज भी जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि हम एक दूसरे से ही अटैच हैं। अगर हमें कुछ खाने के लिए कल चाहिए है, तो बिना उन मधुमक्खियों के, बिना उन छोटे कीड़े मकोड़ों की सहायता से हमें कभी कुछ खाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। आज हमारे पूरे शहर से गौरैयाँ जा चुकी हैं। आज हमें छोटी चिड़ियों के नाम पर अगर हम आसपास देखें, तो गांव के आसपास हमारे लिए अगर घूमने, ऐसे पैदल घूमने पर कम से कम 12 से 15 प्रकार की रंग बिरंगी चिड़िया, कम से कम 3 से 4 प्रकार के जानवर, कभी नेवला भी दिख जाता है, कभी कुछ हिरण दिख जाते हैं। हम उत्सुक हो जाते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे सागर के आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सब दूर होती जा रही हैं। उसका रीज़न, हमारे आसपास में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर अपन देखें तो बस स्टैंड से जाते हुए जो हनुमान जी का एक मंदिर पड़ता है, उधर पे पाइड मैना, जो मैना की एक प्रजाति होती है, और मैना चिड़िया हम किसानों के इतने काम की चिड़िया है, क्योंकि वो छोटे कीड़े खाती है। उसके डाइट में सबसे ज़्यादा छोटे कीड़े और ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी फसल नुकसान करती हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, क्योंकि उनके बिना हमारे बीज हर जगह फैल नहीं सकते। तो इकोलॉजी हमें समझनी होगी। वो पाइड मैना का एक घर जाने से कम 1000 से 2000 चिड़ियों से ऊपर बेघर हो गई। पिछले 3 साल में जो हमारे यहाँ पेड़ कटे हैं, उससे कितने पक्षी ना जाने कहाँ कहाँ चले गए। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा एक रिकॉर्ड जो अभी मैंने शॉट किया था, मेरे को सागर में एक दुनिया की सबसे छोटी पाई जाने वाली बिल्ली, जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट, ये एक जंगली बिल्ली होती है, इसकी साइज़ दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली की साइज़ में आकी जाती है। और इसका अभी पहला रिकॉर्ड कुछ समय पहले ही हमारे पास में वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क में मिला, जिसको हम नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से भी जानते थे। तो समझने की बहुत बातें हैं, सागर में बहुत कुछ है। आप देखेंगे, आसपास निकलेंगे, तो आपको सागर के अंदर अंदर, मेरा जो मानना है, मेरा जो एस्टिमेशन है, हमने लगभग 140 प्रकार की चिड़ियाँ सागर के आसपास में देखी हैं और कवर की हैं। और ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा जानना अब सीखेंगे, बर्ड्स के बारे में जानेंगे, तो आपका एक लगाव जो रहेगा, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है हम ह्यूमंस की, कि हम नेचर से जुड़कर चलें, वो चीज़ आपकी सामने आएगी। वाइल्ड लाइफ या वन्य प्राणी कोई अलग भाग नहीं है हमारी लाइफ का, ये एक हिस्सा है हमारी जीवन का। हम इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगर हम सांपों की बात करें, तो एक सांप का विष एक को मारता भी है और दूसरे का विष हमें बचाता भी है।

0: तो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, एक जो प्रजातियां हैं हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हमेशा डर किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है, आप डरते रहेंगे आप चीज़ों को मारते रहेंगे। आप उनसे डरिए मत, जानवर डरने का विषय नहीं है, जानवरों को जानना सीखिए। हम किस तरीके से उनके साथ रहकर भी अनजान होकर रह सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज कूनो का जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट चीता, वो फेमस हुआ, उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको रोज़गार भी मिला। तो ये हमें जानना होगा, इस पर हमें काम करना होगा। तो जैसे कई बार हम भी कहीं घूम रहे होते हैं, हमें भी कई बार कोई बेजुबान पक्षी दिख जाता है या कोई ऐसा जानवर दिख जाता है जिसके बारे में ना कभी हमने उसे देखा है ना कुछ किया है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि शायद हम उसकी मदद कर सकें। तो कई बार हम उनके लिए कुछ गलत खाना भी खिला देते हैं जो शायद उनकी डाइट का पार्ट ना हो, तो उस तरीके से हम उन्हें नुकसान पहुँचा देते हैं। लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं, उसका सीधा साधारण सा एक तरीका है। सबसे पहले कभी कोई अगर आपको चिड़िया दिखती है या कोई चिड़िया अभी गर्मियों में गिरी हुई दिखती है, तो इस समय काफ़ी चिड़िया डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं, पानी ना मिलने की वजह से गिर जाती हैं। तो आप उनको थोड़ा बहुत पानी ऑफर कर सकते हैं और 5 से 7 मिनट रुककर थोड़ा दूर उससे देख सकते हैं कि बर्ड मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मूवमेंट करती है तो शायद वो थोड़ी देर में वापस हवा में उड़ जाएगी, उसे पानी की कमी थी। लेकिन अगर कई बार आपको कोई ऐसा पक्षी मिलता है जिसका पंख डैमेज है, या कभी कई बार कोई सांप मिलता है जो रेस्क्यू करने की ज़रूरत है कई जगह पर है, तो हर बार आपके लिए उसे रेस्क्यू करना या उसे बचाना एक सही सौदा नहीं है। तो उस जगह पर आप ना जाएं, आप वन विभाग की सहायता लें या आप जो आसपास में लोग उसका काम करते हैं आप उनकी हेल्प लें। आप रेस्क्यू में काम कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं चीज़ें, इस छोटी छोटी तरीकों से आप सीख सकते हैं। और जैसे कि हम भी कई बार वाइल्ड लाइफ जो हमारे लिए मिलती है, जो वन्य प्राणी हमारे लिए मिलता है, तो कई बार हम लोग भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वन विभाग की सहायता लेकर या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं किस तरीके से हम उस बेजुबान जानवर को बचा सकते हैं। 9907899175 ये मेरा नंबर है, आप किसी भी टाइम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आवश्यकता लगे मैं सुझाव दे सकता हूँ आपके लिए। मेरा नंबर रिपीट करूँगा, 9907899175। तो मैं अब चलते चलते बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आसपास के पर्यावरण को बचाइए। आपको कहीं किसी हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं किसी नदी किनारे बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक आप अपने घर पे भी टेरेस गार्डन बना सकते हैं, आप उसके आसपास ही कम से कम 20 से 25 प्रकार के प्रजाति अपनी छत पर रोज़ देखेंगे, उसके साथ में ठंडी हवा का लुफ्त उठाएंगे। तो सोचना आपको है, बदलना आपने हमने सबको एक साथ है। हमें कल का सोचना है, आज जीना है, आज जीने के लिए पेड़ ज़रूरी हैं, पेड़ लगाइए। और वन्य प्राणी बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाइए। धन्यवाद। माटी की महक,
1: श्रोताओं आज आप औरों की मुलाकात करवा रहे हैं प्रदीप कुर्मी से। आप बुंदेली लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की कला से जुड़े हैं। बुंदेली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लाने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। लोक संस्कृति के प्रति आपको समर्पण निश्चित रूप से समाज के लाने एक प्रेरणादायक बात है। और सुनत है का कहबो है प्रदीप कुर्मी को।
2: प्रदीप कुर्मी और हम मकरोनिया बुजुर्ग सागर से रहने वाले हैं। हम एक छोटे से कलाकार हैं जो कि बुंदेली लोक नृत्य, बधाई, बरेदी, नौरता ये सब करत हैं। हमारी स्कूली पढ़ाई पुरानी मकरोनिया से भाई, और स्कूल में ही वो मैं एनुअल फंक्शन में हम उन्होंने करी थी बरेदी दीवारी। एक महीना की मेहनत करने के बाद दीवारी करी, और दीवारी करने के बाद उसे एक जज आए थे कोई कहीं बाहर की सर आए थे, तो वे कहने लगे तुम्हारे जो कर रहे हो और ये में अगर आगे करो तुम्हारे बुंदेली लोक संस्कृति को आगे भी बढ़ा सकत हो और एक आप रोजगार के रूप में भी चला सकत हो। वो समय स्कूल के समय करने के बाद हम उन्होंने थोड़े थोड़े ऐसे लोकल में तय करा था सागर में। उसके बाद हमारे कॉलेज में आए, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हम उन्होंने बॉयज कॉलेज में एडमिशन लाओ, और बॉयज कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद युवा उत्सव होते के बाद हमारे रेगुलर जो कार्यक्रम करता रहा और बुंदेली लोक संस्कृति को आगे बढ़ाता रहे। और 2015 के बाद लगभग हम 30-40 कार्यशालाएं को प्रशिक्षक के रूप में हम कर चुके हैं विभिन्न संस्थाओं में, निःशुल्क सिखाऊ थे हमारे 1000 से 1500 बच्चों के दाने हमारे जी।

0: लोक संस्कृति की बधाई बरेदी नौरता ये सब चीजें सिखा चुकी है। शुरुआत में जब हमारे जो कार्यशाला जी लगाती प्रशिक्षण शिविर सो हमारो किला ने ये में जो बताने पड़ते तो कि में हमारे वेस्टर्न डांस भी सिखा रहे हैं और बॉलीवुड भी सिखा रहे हैं और ओके संगे चुपकी से बुंदेली लोक नृत्य ऐड कर देती हूँ मैं, जोड़ देती हूँ हमारे। और जो नई उम्र के लड़का और लड़कियां रही थे उनकी लाने हम और बिल्कुल बारीकियों से चीजें बताते और धीरे धीरे हम और ने फिर उनकी लाने बुंदेली लोक नृत्य कार्यशालाओं पे ले आए ले आ पाए ना तर इतने के अपने लोकल ही के थे बुंदेली खंड क्षेत्र के लोग एक किलाने बधाई बरे दी किलाने जानते कि जे तो गांव को आए कार करने आए गई वो तो उनसे ही आ जाते। लेकिन जब अपन ने धीरे धीरे कार्यशालाएं लगाई और हमारों के गुरुओं ने ये चीजें बताई कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करने के लाने और ये तरीके से अपन आगे बढ़ाई ये धीरे धीरे बढ़े जो एक दिन मैंने बढ़े तो जब हम और अकेला ने मतलब आज भी नहीं कह सका तो अकेला ने अपन के पूर्ण पूरे तरीके से अपन सक्षम हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे भविष्य ऐसा हुआ है कि अपन बुंदेली लोक संस्कृति को बहुत आगे चलिए। लोक नृत्य के अलावा हम बुंदेली वाद्य यंत्र में जैसे मृदंग होगा नगड़िया हो गई ये में भी रुचि रखा थे और एक को हमारे लाने बहुत शौक है मृदंग को। वो कहूं भी ऐसा कार्यक्रम हुए कोनों को भी कार्यक्रम हुए सुप राई हुए दिवारी हुए फागे हुए भक्त हुए तो मैं अपन मृदंग बजावे और नगड़िया बजावे को जहां मौका मिला सो हम उते बजाऊ थे। जय के वो चाहे कि जैसे आज मातृ दिवस है तो जैसे अपन माँ बाप की सेवा करते हैं माँ बाप की अपन सुरक्षा रक्षा करते हैं ऐसे ही अपने मताई लो अपनी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति कहा ही अपनी तो इन लोक संस्कृति को हम ऐसे ही अपने माँ बाप जैसे एक हो संरक्षण करना और एक हो संवर्धन करने एक हो बचाने हैं जैसे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
1: अब आप औरों को सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में लोकगीत।

0: इस सप्ताह चर्चा में।
1: श्रोताओं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश भर में कई कार्यक्रम और चर्चाएं आयोजित की गई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा और साहस का प्रतीक बनकर उभरा है। इस अभियान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और सेना के पराक्रम को दर्शाया। भारतीय सेना की एकजुटता, तकनीक और रणनीति की पूरे देश में सराहना हो रही है। युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी ये अभियान महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत में जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। इस बार जनगणना को डिजिटल रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा भी दी गई है। सरकार के अनुसार जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें घरों और जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस प्रक्रिया से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। जनगणना में पहली बार डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन डेटा संग्रहण पर विशेष जोर दिया गया है। श्रोताओं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 8 मई को कई केंद्रों पर रन फॉर रेडियो और मैराथन जैसे आयोजनों के माध्यम से लोगों ने आकाशवाणी की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। इस अवसर पर

0: प्रसार भारती ने रेडियो की जनसेवा, संस्कृति और सूचना प्रसारण में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रमों में युवाओं, कलाकारों और श्रोताओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर रेडियो के प्रति अपना जुड़ाव दर्शाया। आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर का संकलन और निर्माण अदिति जैन का था। संयोजन और प्रस्तुति थी दीपक कुमार निषाद की।
1: गागर में सागर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन और निर्माण अदिति जैन का था। संयोजन और प्रस्तुति थी दीपक निषाद की। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है कार्यक्रम संगीत सरिता का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व

0: वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं मोतीलाल कुशवाहा से ये हनुमान वंदना।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी चोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में चोयल पत्थर।
1: चोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब सुनिए निरंजन कुमार शर्मा से ये गारी गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब सुनिए चंद्रभूषण पाठक से ये गारी।

इस गारी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बाल सभा।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: माँ की ममता अनुपम न्यारी, माँ से महके दुनिया सारी, डांट में भी स्नेह अपार, माँ है जीवन का सच्चा आधार, माँ से ही है जीवन साकार। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम बाल सभा की करते हैं शुरुआत। और बच्चों, आपकी सुनंदा दीदी आज है आपके साथ, तो आप सभी बच्चों को मातृत्व दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं का। और बच्चों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में हार्दिक वंदन अभिनंदन है आप सभी बच्चों का। और बच्चों देखो, अब तो छुट्टियां चल रही हैं और खूब मौज मस्ती भी चल रही होगी, है ना? ना पढ़ाई की चिंता, ना स्कूल जाने की चिंता। पर बच्चों, हमारा ये कार्यक्रम है ना, आपकी पढ़ाई भी करवाएगा और बहुत अच्छी सीख भी देगा आपके लिए। और ये सारे काम

काम तो हम आपको घर बैठे ही करवाएंगे। हाँ, बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो उठ जाइए, और यहाँ वहाँ खेल रहे हैं तो अपनी दीदी के साथ बैठकर आइए, मिल बैठकर कर लेते हैं बातें। जी हाँ बच्चों, अरे हाँ बच्चों, लेकिन हम जिस तरह सारे काम नियमबद्ध करते हैं ना, हाँ, नियमबद्ध तरीके से ही तो करते हैं अपने सारे काम, तो ठीक उसी तरह बच्चों अपने कार्यक्रम में भी सारी जानकारी क्रमानुसार ही हम आपको देंगे। तो चलिए आते हैं बच्चों प्रथम क्रम बाल धमाल पर। ये क्या बच्चों, छुट्टियां चल रही हैं तो घर का नजारा तो निराला ही है। एक तरफ आपकी मम्मी आपके कामों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ आप बच्चों ने शायद उथल पुथल मचा रखी है। अरे बच्चों, इसीलिए तो हल्की फुल्की डांट भी आपको पड़ती होगी, और आप यही सोचते हैं ना, अरे छुट्टियां हैं तो क्या खेलेंगे नहीं। लेकिन बच्चों, माँ आपको खेलने से मना नहीं करती, बस माँ तो ये चाहती है कि आप अच्छे संस्कार सीखें, अनुशासन में रहें, जीवन में खूब आगे बढ़ें। बच्चों, इसीलिए तो कहा जाता है माँ एक अच्छी गुरु होती है, उनकी हर बात में हमारा भला ही तो छिपा होता है ना। तो बच्चों अब ध्यान रखना, अगर मम्मी आप कभी गुस्सा करती हैं, आपको डांटती हैं, तो मुंह नहीं फुलाना है, बल्कि उनका कहना मानना है। जानते हो बच्चों, उनका हर शब्द हमारे लिए एक सीख होता है। बच्चों, मम्मी आपको बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं ना। और अच्छे संस्कारों की सीख भी तो माँ देती हैं, और बड़ों का सम्मान, शिष्टाचार, किससे कैसे बात करना है, यानी बच्चों ये छोटी छोटी बातें हमें अच्छा इंसान बनाती हैं। अभी छुट्टियां हैं तो आप बच्चे सोचते होंगे ना कि थोड़ा और नींद ले लें। अब देखिए, अभी दीदी ने कहा ना, उठिए उठिए बच्चों, तो अभी भी आपको लग रहा होगा, अरे दीदी हमें सोने दीजिए ना। और ऐसे ही आपको मम्मी ने अभी सुबह सुबह उठाया होगा ना, तो आप यही कहते होंगे, अरे मम्मी थोड़ी नींद और लेने दीजिए ना। लेकिन बच्चों, आपकी मम्मी आपको समय पर जगा देती होंगी, क्योंकि छुट्टियों में भी तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह यानी धूप तेज होने से पहले हमें करना होते हैं या सीखना होते हैं। जैसे किसी क्लास में जाना है, और अभी समर कैंप भी चल रहे होंगे, है ना, तो कैंप में भी जाना है। तो बच्चों ये तो काम जो है ना अनुशासन मांगते हैं, और वो अनुशासन सिखाती हैं आपकी मम्मी। समय पर उठना, पढ़ाई करना, अपने काम स्वयं करना, आपको कभी कभी मम्मी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। हम समझते हैं, धीरे धीरे यही तो कह रहे हैं आप, अरे मम्मी तो बहुत डांटती हैं दीदी। आप कह रही हैं कि मम्मी हमें अनुशासन सिखाती हैं, लेकिन मम्मी बहुत डांटती हैं। हाँ बच्चों, माना कि मम्मी बहुत डांटती होंगी, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए ही तो डांटती है ना। और मम्मी की हर डांट में, हर गुस्से में प्यार छिपा होता है बच्चों, और ये बचपन है बच्चों, मम्मी से भी रूठना मनाना चलता ही होगा। लेकिन बच्चों, मम्मी के द्वारा सिखाया हुआ अनुशासन और आदतें अगर आप अभी सीख लेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे ना बच्चों, तो आगे चलकर ये सब बहुत काम आते हैं। कभी कभी जब आप बीमार हो जाते हैं, तब मम्मी आपको कितनी हिम्मत देती हैं, है ना, देखभाल भी करती हैं आपकी, कितने प्यार से ये सिखाती हैं कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत बनना है। एक बात और बच्चों, इन दिनों भी आप देखते होंगे कि घर में शायद मेहमान भी होंगे, काम भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी इतने काम और जिम्मेदारियों के बीच आप बच्चों के लिए समय तो निकालती ही हैं, है ना। यानी आपको भी जिम्मेदार बनने की एक सीख मिलती है। आप देख सकते हैं कि मम्मी किस तरह से इतने सारे कामों के बीच आपके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। और सबसे खास बात ये बच्चों कि मम्मी, जी हाँ बच्चों, माँ अपने हर बच्चे को सच्चा और अच्छा इंसान बनाती है। बच्चों, माँ ही तो है जो सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। बच्चों मदर्स डे है, हाँ, मातृत्व दिवस, तो चलिए शुभकामनाओं के रूप में दुनिया की हर माँ के लिए एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत था ना बच्चों। हाँ, और माँ तो बहुत सुंदर होती है। तो बच्चों, आज आप अपनी मम्मी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके साथ पूरा समय आप बिता सकते हैं और हर काम में भी हाथ बटाना है। और आज ही क्या बच्चों, हर दिन आपको मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए, है ना। तो बच्चों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नन्हे कदमों की आहट से महफिल सजने वाली है और छोटी छोटी मुस्कानों से खुशियां बरसने वाली हैं। सही समझा बच्चों आपने, हमारा अगला क्रम है बाल मंच।
1: ओ, लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: तो लीजिए बच्चों, करते हैं हम बाल मंच की शुरुआत। और आज बाल मंच में हमारे बीच एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, एक फुदकती चमकती सी गुड़िया आज हमारे बीच है। हम जानते हैं उनका प्यारा सा नाम क्या है।
3: मेरा नाम आराध्या चौरसिया है।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आराध्या?
3: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: और क्या क्या शौक हैं आराध्या आपके?
3: मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहती हूँ।
0: तो किससे ये प्रेरणा मिलती है आपको गीत संगीत के बारे में?
3: हमारे गुरुजनों से और हमारे माता।
0: बड़ी ही अच्छी बात है, इनकी बातों से लग रहा है कि इन्हें जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ये आगे चलकर अपना नाम भी रोशन करेंगी और देश और समाज का नाम भी रोशन करेंगी। तो आराध्या जी, हम आपसे कुछ और भी बातें करेंगे।
3: हाँ हाँ दीदी, हम तो बाल मंच में बहुत उत्साह से आए हैं।
0: आपका उत्साह तो हमें दिख रहा है। तो आराध्या, छुट्टियों में आप अपना समय किस तरह से बिताएंगी?
3: मैं अपने मामा के यहाँ पर जाकर बिताऊंगी।
0: अच्छा, बस इतना ही सोचा है आपने?
3: हाँ हाँ दीदी, आकर छुट्टियाँ हैं हमारी।
0: तो छुट्टियों का मतलब केवल धमाचौकड़ी करना या सिर्फ घूमना फिरना ही तो नहीं होता ना?
3: अरे हाँ दीदी, हम तो भूल ही गए कि हमें छुट्टियों में बहुत कुछ सीखना है। हम अपने बड़ों के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। अपनी मम्मी से घर का व्यवस्थापन सीखेंगे, अपने दादा दादी से उनके अनुभव प्राप्त करेंगे।
0: बहुत ही अच्छी बातें हमारी आपसे चल रही हैं, लेकिन आपसे एक बात और कहेंगे कि जिस तरह आज हमारे देश में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, खेलों में भी आगे बढ़ रही हैं, तो कभी खेलों की तरफ आपका रुझान नहीं हुआ क्या?
3: हाँ दीदी, हुआ है।
0: तो कौन सा खेल अच्छा लगता है आपको?
3: बैडमिंटन।
0: और बताओ तो जरा, हमारा जो भारतीय खेल है वो कौन सा है?
3: हॉकी। और दीदी, हम बहुत से खेल भी पसंद करते हैं, कबड्डी, पिट्टू, खो खो।
0: और लंगड़ी भी तो एक हमारा पारंपरिक खेल है। क्यों भाई आराध्या, देखो कितनी मुस्कुरा रही हैं आप, हमें लगता है कि आप घर में लंगड़ी जरूर खेलती हैं, है ना?
3: हाँ दीदी।
0: बताओ तो जरा, उसमें कितने चौखाने बनाए जाते हैं?
3: लंगड़ी खेलने के लिए 10 चौखाने बनाए जाते हैं।
0: और कैसे खेली जाती है?
3: एक पैर से।
0: एक पैर से खेलते हैं, तो एक पैर से क्या करते हैं उसमें?
3: एक पैर से जो गोल गोल पत्थर रहता है उसको हम खिसकाते जाते हैं चौखाने में।
0: चलिए, आप यूं ही प्रयासरत रहे अपने हर कार्य में, हर क्षेत्र में। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जान लेते हैं कि आज बाल मंच में आप क्या सुनाने जा रहे हैं अपने साथियों को।
3: हम बाल मंच में अपने साथियों को भगत सुनाने जा रहे हैं।
0: चलिए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: जहाँ बैठी भवानी दूधा बहे जैसे पानी, जहाँ बैठी भवानी। धन्यवाद।
1: इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी भगत आपने सुनाई। इसी के साथ आराध्या जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बाल मंच में आज बड़ी प्यारी बातें की अपने साथियों से। चलिए भाई, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे हैं आराध्या जी, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके सभी साथियों को इतना ही कहेंगे कि आप बाल मंच में आ सकते हैं और चाहें तो आप पत्रों के माध्यम से भी हम तक अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। पत्र माध्यम का हमारा पता है कार्यक्रम बाल सभा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सागर, पिन कोड है बच्चों 470001। इसी के साथ इस क्रम को यहीं समाप्त करते हैं।
2: लेकर आए बच्चों का शो
3: बाय मंच।
1: बाल मंच, जी हाँ बच्चों, अभी हम सुन रहे थे बाल मंच में एक नन्ही सी कलाकार को, ये थी आराध्या चौरसिया। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो आप बच्चों को कहानियों का अभी तो इंतज़ार रहता है ना, तो कहानी के लिए हमारे बाबा जी तो अपना पूरा का पूरा पिटारा लिए आ गए हैं। बच्चों आप तैयार हैं ना, चलिए सुनते हैं उनके पिटारे से एक कहानी।

0: बच्चों फिर से आ गए आपके बाबा एक और पंचतंत्र की कहानी लेकर। कहानी का नाम है गोलू मोलू और मोटा मोटा भालू। बहुत पुरानी बात है बच्चों। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर खूब जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों को हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें है ना किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने अपनी बहन के विवाह के अवसर पर उन्हें बुलाया था। उनके मित्र का गांव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था बच्चों। जंगल घना, खूब घना जंगल, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों धीरे धीरे चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा।
1: अरे मोलू, मैं तो बच के अपनी जान बचाऊंगा मोलू।
0: मगर बच्चों मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय करने लगा मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू

0: गुड़गुड़ाता पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला,
1: अरे मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने?
2: मुझे मित्र मत बुलाओ मुझे। और ऐसा ही कुछ भालू ने कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है।
0: ये बात सुनकर बच्चों गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई, उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। बच्चों अपने दोस्त के साथ कभी भी दगा गद्दारी हमें नहीं करना चाहिए, है ना? ये सीख मिलती है हमें इस कहानी से। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताना, और बाबा फिर आएगा अगले सप्ताह एक और नई कहानी लेकर। तब तक बाबा तो ये चला।

0: तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी होगी, है ना? तो अब चलें बच्चों? अरे भाई चलिए चलते हैं देखने।
1: ओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
2: जाकी हिंदुस्तान की।
0: झांकी हिंदुस्तान की। हाँ बच्चों, हमारे कार्यक्रम का एक अनोखा क्रम है ये, जहाँ हम आपको बहुत सी सैर कराते हैं, पूरे भारत की सैर करवाते हैं बच्चों हम आपको। प्यारे बच्चों, आज हम अपने देश की एक खास झांकी देखने वाले हैं। वो ये कि गर्मी के मौसम में हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है। बच्चों आपने सोचा है, हमारे देश में कहीं बहुत तेज गर्मी होती है तो कहीं ठंडा भी होता है इस मौसम में। और बच्चों यही तो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, विविधता। बच्चों अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ गर्मियों में रेगिस्तान और तपती धूप मिलती है, रेत के टीलों पर ऊंट चलते हैं और लोग रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। और वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में गर्मियों में भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि बच्चों वहाँ पहाड़ और हरियाली है, लोग वहाँ ठंडक का आनंद लेने के लिए घूमने भी जाते हैं। अब बच्चों अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ गर्मी में तेज धूप होती है, लेकिन साथ ही आम के पेड़, तरबूज और ठंडे ठंडे पेय पदार्थ भी मिलते हैं जो हमें राहत देते हैं। जानते हो बच्चों, हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं जंगल। और हाँ, और बच्चों यही हमारे भारत को खास बनाता है कि एक ही देश में इतने अलग अलग रंग, मौसम और जीवन शैली। तो बच्चों हमें हर जगह की खासियत का सम्मान करना है। और देखिए अपने हिंदुस्तान की झांकी की, यहाँ पे रेत भी है, पर्वत भी है, नदियों का संगीत भी है और गर्मी की तपिश में भी हिंदुस्तान का रंग अनोखा है। तो बच्चों यही तो है झांकी हिंदुस्तान की। तो हमारा आज का ये क्रम झांकी हिंदुस्तान की बस यहीं तक। अब बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। क्या है? अरे भाई बच्चों भूल गए, ये तो आप भूलेंगे ही। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे, दीदी हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों में भी आप हमें पढ़ाई करवाएंगी। अरे बच्चों हमने कहा ना, अनुशासन के साथ हमें रहना है। तो हमारा जो और समय सारणी, जी हाँ बच्चों समय सारणी बनाकर भी तो हमें चलना चाहिए। छुट्टियों में भी अगर आप अनुशासन रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर आप बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो की पाठशाला।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: रेडियो की पाठशाला। बच्चों आज हम बहुत जरूरी बात सीखने वाले हैं इसमें कि हीट वेव और लू क्या है, कैसे अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं इनसे। बच्चों हीट वेव है कई दिनों तक तापमान का बढ़ना और लगातार तेज गर्मी पड़ना, यानी असामान्य गर्मी। और लू का जो प्रकोप होता है बच्चों, लू एक बहुत गर्म और सूखी हवा जो खासकर दोपहर में चलती है। जब ये गर्म हवा हमारे शरीर पर लगती है ना बच्चों, तो हमें चक्कर, कमजोरी या हल्की बीमारी सी महसूस होती है। इसे लू लगना कहते हैं बच्चों। यानी बच्चों गर्म मौसम में चलने वाली तेज गर्म हवा जो होती है वो लू कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि लू क्यों लगती है। अरे दरअसल बच्चों हमारे शरीर को ठंडक देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम तेज धूप में जाते हैं तो शरीर से बहुत पसीना निकलता है, शरीर का पानी कम हो जाता है और शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हमें चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, ये सब ऐसा महसूस होने लगता है। और बच्चों यही लू लगना होता है। और इससे बचाव के आसान तरीके हैं बच्चों कि दोपहर में 12 से 3 तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और बहुत ज़रूरी हो तो सिर पर कपड़ा बांधें, पानी खूब पिएं और नींबू पानी, छाछ, लस्सी ऐसे ठंडे पेय पदार्थ ज़रूर लेना है और हल्के और ढीले कपड़े पहनना है बच्चों। तो बच्चों संकल्प कीजिए कि धूप में सावधानी रखेंगे, खूब पानी पिएंगे, अपने साथ साथ दूसरों की सेवा भी करेंगे, ध्यान देंगे उनका भी कि अगर कोई आपको ऐसे मिल जाता है जिसे कोई परेशानी हो रही है तो उसे पानी दीजिए और कोई उन्हें अपने अगर कोई धूप लग रही है, कपड़ा चाहिए तो उन्हें मदद करना है बच्चों हमारा मतलब। ठीक है, तो हमारा आज का ये क्रम रेडियो की पाठशाला बस यहीं तक। और बच्चों बस चलते चलते अब एक बात और हम आपको बताएंगे कि ये जो मदर्स डे हम मनाते हैं, मातृत्व दिवस, मई के दूसरे रविवार को ही क्यों मनाते हैं। दरअसल बच्चों ये दिन इसलिए चुना जाता है क्योंकि इस दिन ये छुट्टी का दिन है और हम सभी एक साथ रहते हैं, है ना, मम्मी भी साथ रहती हैं, पापा भी साथ रहते हैं, तो ये तय दिन है जब हम सब लोग एक साथ रहते हैं और हर साल लोग इस दिन को याद रख सकें, इसलिए इसे मई के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है। तो धीरे धीरे ये परंपरा भी पूरे दुनिया में फैल गई बच्चों। तो बच्चों माँ वो छाया है जो धूप में भी साथ रहती है, माँ वो दुआ है जो हर मुश्किल में काम आती है, जो सम्मान अपनी माता का करते हैं सच्चे मन से उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर जाती है। बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए अपनी सुनंदा दीदी को और मिलकर बोलिए जय हिंद।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाल सभा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: सोना महापात्रा की आवाज में इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट। इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमरे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज।

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

0: दुनिया।
1: पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणि मोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज।

0: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।
1: सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था। हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे उमरिया जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है।

0: उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केन्द्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकल्पकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी। यह आकाश

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए, फोन करें, गीत सुनिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो,
1: आकाशवाणी सागर, फोन करें गीत सुने।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपना नाम बताएं।
1: मंगल गंधर्व, ग्राम लिधौरा, जिला सागर।
0: मंगल भाई, क्या करते हैं आप लिधौरा में?
1: कुछ नहीं सर, करते हैं। गर्मी के दिन लगे
0: तो कुछ भी नहीं कर

0: वे आप?
1: हम गर्मी में क्या करेंगे जो गर्मी में? काम हम तो सर ऐसे खेती किसानी का है, अभी तो गर्मी में बंद है, अभी तो फिलहाल चल रहा है। कभी कभार घूमने के लिए निकल जाते हैं, जैसे
0: कहाँ जाते हैं,
1: शादी चल रहा है अभी।
0: हाँ, और देखिए गर्मी में निकलें जरूर, और जब भी निकलें तो खास तौर से लू से बचने के सारे उपाय अपना कर निकलें आप।
1: हाँ, जैसे तौलिया वौलिया बांध के कानों से।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए लू लगने में तो सारे आदमियों को परेशानी हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों। मंगल भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना सर निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम भोरा मान जाना।
0: तो आइए सुनते हैं मंगल भाई आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जी स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: मंगल चौराहा बोल रहे सर, ग्राम बिलगिया से, पंचायत बिलगिया से।
0: मंगल भाई, एक आश्चर्यजनक बात बताएं आपको कि आपसे पहले जो श्रोता आए उनका भी नाम मंगल था। आपका बिलैया गांव कहां पर है, सागर से कितनी दूर है?
1: सागर से सर 50 किलोमीटर है।
0: अच्छा अच्छा, और मंगल भाई करते क्या हैं आप?
1: यहां सर मजदूरी करते हैं, मान लो खेती किसान करते हैं काम।
0: अच्छा अच्छा, तो आपकी खुद की खेती है कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं? सरकार भी चाहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, और धीरे धीरे अगर आप मिश्रित खेती की तरफ बढ़ेंगे और आकाशवाणी सागर से जो भी विषय विशेषज्ञ आते हैं, आप लोगों को खेती के बारे में बताते हैं, नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं, उनको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका खेती का काम है वो लाभ का धंधा बन जाएगा। एक चीज से और हमें बचना है, लू से बचना है। गर्मी के मौसम में जो हम निकल जाते हैं बाहर बगैर सिर पे गमछा तौलिया डाले हुए, पानी ना पिए हुए, तो ऐसे में बहुत हद तक लू जिसे डिहाइड्रेशन भी,
1: हम जब बाहर निकलते हैं तो तौलिया अपन बांधते हैं, लू न लगे उसमें।
0: और क्या क्या करते हैं आप बताएं थोड़ा सा।
1: धूप में निकालते नहीं है, ठंडा पानी पीते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात है। बताएं मंगल भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना हमें सुनने सारे दिलवाली फिल्म का गाना, दिलवाली को कौन भी सुना देना था।
0: ठीक है, आइए सुनते हैं मंगल भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म दिलवाले का ये गीत।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं?
1: सच में।
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे हो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का
0: जी।
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल उस म्यूजिक

0: 前と言ってないお前と言ってないよ。
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था। और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे। और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था। और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी।
1: हाँ, आप बेहतर जानते हैं, गढ़ गढ़ था उस समय फिल्मों का
2: जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी। और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं और वहां से ये आ गए मुंबई। और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब
1: जी, हाँ।
2: जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी।
1: 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे की फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे। और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे, एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं। तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: ये समझ सकते हैं श्रोता कि जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम
2: जी,
1: उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रंजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है
1: जी। हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है।
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी।
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था और थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला। और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया और फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे। नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
3: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
4: बिल्कुल नहीं अजीब।

0: लगता हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
1: आजकल आपको, अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं?
0: तो
1: या ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
0: नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5-6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी 1-1.5 घंटे में भाग जाएगा। तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके 1-man show करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं, समझो कि 6-8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है। शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं, समझे, गुरुदेव टैगोर का करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए हैं, समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और न ही उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में?
0: हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे, समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय, समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो डॉक्टर है, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है, समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है, समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग, मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर, समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है, समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है, समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
0: नहीं, मेरे घर में देखिए
1: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
0: ये भी लिखता हूँ, इसमें चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे, हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजूमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे।
1: समझे आप क्या

0: क्या करते थे?
1: क्या कमाल है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं समझे, और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं। ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते समझे। तो वो है बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जब सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं, और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा
3: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया
3: जी हाँ।
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
4: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
3: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनके रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
2: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढंटन टैन, वो फिल्मों में नहीं होता, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
3: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
2: ये वो दौर की फिल्म है ना, कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है, और उसके बाद क्या, ढंटन टैन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे, सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढंटन टैन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी। और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
3: बताइए।
2: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
3: क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है।
2: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
3: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
2: जी,
3: सुनना पड़ेगा, और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
2: तो चलिए सुन लेते हैं।

0: अमर जी
1: दी.
0: क्या गाना, वाह. बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना. न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता.
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए. पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया. लेकिन तो खैर सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है. बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश
1: मेहरा साहब का. और फिर ये आ गए मुंबई. आए तो थे ये गीतकार बनने मनीषा जी,
0: जी.
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया. उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल. और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ.
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था. और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे. और मनीषा जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना. आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आप की जबान से.
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब.
0: जी हाँ जी हाँ.
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा. और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया
0: जिसने हमें महानायक दिया. फिल्म बनी जंजीर.
1: मनीषा जी फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं.
0: बिल्कुल.
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे.
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता. आप जरा किस्सा सुनाइए.
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी.
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी.
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का,
0: दिल जला के
1: प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया. एक और था गाना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए. आप जानती है गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना.
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो.
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा.
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई.
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास. देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए. तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो
0: हूं.
1: तो उन्होंने इनकार कर दिया. अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की. अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी.
0: अच्छा.
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने सलीम साहब ने उनसे.
0: अच्छा.
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए. और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास.

0: लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
1: यही मुंबई में।
0: मुंबई में और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी,
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब अच्छा। जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार
1: जी। हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे। और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओ, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ। मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलना। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पर बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है ना, वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई

0: भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
1: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
0: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ। उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
1: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री?
0: आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे। उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वही हमारी फिर दोस्ती हो गई, काम करते करते बोनसागल के। और उसके तो हमारे दोस्त थे इंदू भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदू भूषण से दोस्ती हो गई। इंदू भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदू भूषण को यहाँ तक बोलता रहा कि इंदू भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल मोटरसाइकिल के साथ और काम करने दो, व्हील मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से मोटरसाइकिल के, वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदू भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोटरसाइकिल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोटरसाइकिल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा कि यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज्ड टू बिलीव इन डेस्टिनी, कि आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सीना मान जाएगी शुरू हो गई। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी भी वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नडियाड वाले की, एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
0: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे,

बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। वो भी रजन की फिल्म बदहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित कुबर यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त। दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे। नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया, और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो, एंड मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राजराज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राज जी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, मैं प्रिंट आपको, नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राजीव की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता था।

0: होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जानेमन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस
0: तो
1: निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था

0: सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियुक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
0: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

लग गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न चैना, बात तक थक थक गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न चैना।

0: फिनिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी। इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अलीबाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, दिन का एक बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय। कितना मिलता जुलता है ये समय, और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत, और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मज़ेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है, पर आपके गीतों का हमने इंतज़ार किया, एक आधी गीत दिखा सारे गीत तो हमें नज़र नहीं आए। चलिए

ये आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की भारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी इंतजार, इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है, स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है, हम तन्हाई में हो या वीराने में बहार की पायल तो झनकती ही रहती है, सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो, माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं, ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही है कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप, हा हा हा क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है, हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा, आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं, देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है, सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। वो संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूर्त माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बधलता रहता है, दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह बिल्कुल सही है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा, जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे

माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है, उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस

आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियाँ भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया है कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती है कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपने एचएमटी के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।

आज फूलों का बुलबुल के दिया बोले को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया बोले को है आज।

0: बहार बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

उनका नाम मेरे लाल लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत माले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भलाई हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है। चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता, प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी, और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद का है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज़्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

0: जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाजों में है। फिल्म का नाम आर आर आर।

सुनिधि चौहान की आवाज में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तोल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरपुनिया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के से सेवाओं की जानकारी ली और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद

0: नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद

0: தேசமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दैमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान

0: चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: माँ हमें मामा जी कहना।

0: मामा जी एक बात बताना, सब सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम ना आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी न देख तो आओ, ये गुड़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी तरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अवदेश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको भी अब

0: मजरूह सुल्तानपुरी ने धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

आवाज में गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बश्की का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 1,000,000 रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ, अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं तो तुम उन दोनों की शादी करा देना, करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अब सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के पड़ेगा तू। अरे 1,000,000 रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 1,000,000 रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन और?
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: पॉजिटिव पोस्ट मास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
1: क्या किया जाए कंधस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
0: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
1: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
0: तार? कैसा तार?
1: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
0: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
1: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
0: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
1: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
0: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए जा रहा हूं।

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
2: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
2: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
2: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
2: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
2: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
2: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
2: कुछ नहीं माँ जी, यो ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ माँ
1: कौन है? अरे आप नानी नानी, देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल

0: आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंधु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mother! Mummy! Where are you? Oh, silly old lady!
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावटी नहीं, असली मूछें है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया है। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: शिंगारम शिंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? नहीं!

0: पिताजी, ये कुमार स्वामी है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी शिंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश शिंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं तहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, सिंगार में एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये शिंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे

0: चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊँ, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइन भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार एक्टर। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, आप आ जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे,
1: हाँ, वो
0: रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे,

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी। हाँ,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मार

0: आते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जौहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलेक्ट तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीज़ें। अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी?
1: दोस्ताना।
0: ज्यादा वो उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी।
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में? तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब था। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी दिलीप साहब ऋषि कपूर की। कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता था मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश भल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब
0: जी। जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन किसी का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो हो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की
1: बात
0: होंगी,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
0: वो
1: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है। तो रामनाड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब था वो रिलीज के चक्कर में, बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में।

0: वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे।
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
1: जी जी जी।
0: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल। और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो के, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी।
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, क्या हाल चाल सागर प्रेमियों। शुभ रविवार। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और ठीक होगा आपका परिवार। मेरे दोस्तों, स्टूडियो के टाइम मशीन में वक्त हुआ जाता है 5:02। साल के 365 दिनों में खत्म होता हुआ दिन शुमार 130। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युववाणी उपासना की आवाज में। साथियों, आज का रविवार कोई आम रविवार नहीं है। आज ये बस एक छुट्टी का दिन नहीं है, आज का दिन उनका है जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, जो इस धरती पर ममता की मूरत हैं, ईश्वर से जिनकी सूरत है, जिसकी हर वक्त हमें ज़रूरत है। आज का रविवार हमारी माँओं का रविवार है। वैसे तो उनसे ही हर बार है, लेकिन आज हैप्पी मदर्स डे इस बेटी की तरफ से उन सारी माँओं को जो मुझे सुन रही हैं। आज का हमारा कार्यक्रम माँओं को समर्पित है, पर उससे पहले एक प्यारी सी कविता हमारी माँओं के नाम। कहा है कि हमारी माँ कितनी भोली भाली हैं, वो व्हाट्सएप नहीं चलाती हैं, फेसबुक पर भी उनका कोई पता नहीं है, इंस्टाग्राम का नाम तक नहीं जानती हैं, या जानती सब हैं पर उन्हें इस वर्चुअल दुनिया का हिस्सा नहीं होना। शायद वो ये जानती हैं कि जो लोग उस दुनिया के हो जाते हैं वो इस दुनिया में कम ही घुल मिल पाते हैं। हमारी माँ इतनी भोली भाली हैं कि सबकी पसंद का ख्याल रखते रखते वो अपनी पसंद ही भूल जाती हैं। मनपसंद व्यंजन वो सब के बनाती है, उसे क्या पसंद है वो कहाँ किसी को बताती है। दुनिया की कोई परेशानी ऐसी नहीं जिसका हल उसके पास ना हो। भोली है पर हाजिर जवाब ऐसे करती है जैसे उसके पास शब्दों की टोली है। हमारी माँओं के सपने भी उसके बच्चों से जुड़े हैं। हमें भी ये लगता है कि ये पंख उसके दिए हैं, हम तो बस उड़ते हैं। वो कहती है, हार नहीं मानना है, लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है। करती रहोगी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। भगवान जी सब कुछ देखते हैं, तुम्हारी मेहनत पर भी तो उनकी नजर जाएगी। बचपन से देख रही हूँ, हमारे यहाँ जो भी आता है वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। जब जो जितना रहा उनके पास उन्होंने सबको दिया है। सबके लिए हम सब की माँओं ने कितना किया है ना। पूछती हूँ मैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, कहती है कि सोचो कितनी उम्मीद लेकर कोई हमारी दहलीज आया होगा, हमने भी अगर उसकी मदद नहीं की तो उसकी उम्मीद का क्या होगा। मुझे नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं, मुझे तो वो मेरी माँ की सूरत जैसे लगते हैं। माँ हंसती है तो घर पर खुशियाँ ठहरती है, वो उदास अगर हो जाए, वैसे तो होती नहीं पर अगर हो जाए तो घर की दहलीज भी रोती है। उनके होने भर से दुनिया जीती हुई लगती है, वो जिसके हिस्से होती है हर बाजी उसके पल्ले गिरती है। हमारी माएँ इतनी भोली हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं, माँ के बगैर हम कुछ भी नहीं। सही कहा ना मैंने दोस्तों। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं मातृदिवस के उपलक्ष्य में। आज के हमारे भेंट वार्ता के विशेषज्ञ हैं हिमांशु चौरसिया, इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव दीपक निषाद।
1: मातृदिवस, मदर्स डे, माँ वह शब्द है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का सार समाया हुआ है। माँ का प्रेम निस्वार्थ, अटूट और अमूल्य होता है। वह अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सहती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। माँ केवल जन्म देने वाली ही नहीं बल्कि जीवन का पहला शिक्षक, मार्गदर्शक और सच्चा मित्र भी होती है। उसी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने के लिए हर वर्ष मदर्स डे मनाया जाता है। मातृदिवस वह विशेष अवसर है जब हम अपनी माँ के प्रति सम्मान, प्रेम, आभार व्यक्त करते हैं। माँ हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है जो हमें जन्म देने के साथ साथ हमारा पालन पोषण करती है। शिक्षा और संस्कार भी माँ ही देती है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य माँ के त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देना है। माँ का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्चम होता है।

वह हमारे सुख दुख की साथी होती है और हर परिस्थिति में हमारा साथ देती है। जब हम छोटे होते हैं तब माँ ही हमें चलना, बोलना और सही गलत का ज्ञान सिखाती हैं। माँ की ममता और स्नेह जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मातृ दिवस हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को उपहार देते हैं, उनके लिए विशेष भोजन बनाते हैं या उनके साथ समय बिताते हैं। कुछ लोग इस दिन को अपनी माँ को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखते हैं या उन्हें सरप्राइज देते हैं। यह वह दिन है, हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी माँ का सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, वह बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ परिस्थिति क्यों ना हो। माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचती है, इसलिए कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। हम अक्सर अपनी माँ के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मातृ दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम उनके साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मातृ दिवस का इतिहास। मातृ दिवस की शुरुआत आधुनिक रूप में सबसे पहले अमेरिका में हुई। इसे मनाने का श्रेय एना जार्विस को जाता है। उन्होंने अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। एना जार्विस की माँ चाहती थी कि समाज में माताओं के योगदान को सराहने के लिए एक विशेष दिन हो। सन 1908 में एना जार्विस ने अपनी माँ के निधन के बाद वेस्ट वर्जीनिया में एक स्मारक आयोजित की। सन 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। आज यह दिन केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ का प्रेम दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, सफल हो या असफल, माँ के लिए वह हमेशा उसका छोटा बच्चा ही रहता है। वह अपनी खुशियों को दरकिनार कर अपने बच्चे के सपनों को सींचती है। एक माँ के त्याग की गणना करना असंभव है। वह बिना थके, बिना वेतन के साल के पूरे 365 दिन घर और बच्चों की देखभाल में जुटी रहती है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बच्चा स्वस्थ और खुश हो। बच्चों के विकास में माँ की भूमिका। माँ को बच्चों की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। बच्चा बोलना, चलना और सामाजिक व्यवहार करना सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखता है। संस्कारों की नींव। माँ ही बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाती है। मानसिक संबल। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ का विश्वास बच्चों को फिर से खड़े होने की शक्ति प्रदान करता है। स्वास्थ्य और पोषण। परिवार के हर सदस्य की पसंद, नापसंद और सेहत का ख्याल रखना माँ की प्राथमिकता होती है। भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान। भारतीय समाज में माँ को देवी का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश स्वर्गदापी गरिमसी, अर्थात माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारे इतिहास में जीजाबाई, पन्नाधाय और रानी लक्ष्मीबाई जैसी माताओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी संतानों को वीर और चरित्रवान बनाया। भारतीय संस्कृति में माँ का आशीर्वाद किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य माना जाता है। आधुनिक युग और कामकाजी माँ। आज के दौर में माँ की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। आधुनिक माँ ने न केवल घर संभाला है बल्कि बाहर जाकर आर्थिक रूप से भी परिवार की मदद करती है। वह कार्यालय की जिम्मेदारियां और घर के कामों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बिठाती हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। माँ उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। मदर्स डे कैसे मनाएं? मदर्स डे केवल उपहार देने का दिन नहीं बल्कि यह कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इसे विशेष बनाने के लिए कुछ तरीके। समय बिताएं, अपनी माँ के साथ बैठकर पुरानी बातें करें, उनके अनुभव को सुने। काम में मदद। उस दिन कोशिश करें कि माँ को रसोई और घर के कामों से छुट्टी मिले। सम्मान व्यक्त करें, एक छोटा सा पत्र लिखकर उन्हें यह बताएं कि वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उपहार, उनकी पसंद की कोई वस्तु या पुस्तक उन्हें भेंट करें। माँ के प्रति हमारा कर्तव्य। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और अक्सर उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें चलाना सिखाया। हमारा कर्तव्य यह है कि हम उनकी भावनाओं का सम्मान करें, वृद्धावस्था में उनकी उसी तरह देखभाल करें जैसे उन्होंने हमारी बचपन से की थी। उनसे कभी कड़वे शब्द ना कहें। मदर्स डे का सामाजिक महत्व। यह दिन

0: समाज को याद दिलाने का अवसर है कि परिवार की धुरी माँ ही है। यदि माँ खुश है तो परिवार खुश है, और यदि परिवार खुश है तो राष्ट्र सशक्त है। मदर्स डे महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता के भाव को भी बढ़ावा देता है। माँ एक अनमोल उपहार। माँ के महत्व को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह ईश्वर का वह वरदान है जिसकी कमी कोई भी और पूरा नहीं कर सकता। मदर्स डे साल में एक बार आता है, लेकिन मातृ दिवस तो हमारे जीवन का हर दिन होना चाहिए, जिसकी वह हकदार है। माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास माँ का साया है। माँ के बिना घर घर नहीं होता, केवल दीवारों का एक ढांचा होता है। यदि माँ अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाए तो समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बना रह सकता है। माँ का त्याग और समर्पण अतुलनीय होता है। माँ के लिए उसके बच्चे उसकी दुनिया ही होती है। माँ हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार होता है। इस संसार में यदि किसी रिश्ते को सबसे पवित्र और निस्वार्थ माना जाता है तो वह माँ का रिश्ता है। माँ वह होती है जो हमें जन्म देती है, हमारे पालन पोषण करती है और हमें एक अच्छे इंसान के रूप में ढालती है। माँ का प्यार सदा निश्चल और बिना किसी स्वार्थ के होता है। वह अपने बच्चों की खुशी के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार रहती है। माँ केवल गृहिणी ही नहीं होती, बल्कि एक मार्गदर्शक, मित्र और संरक्षक भी होती है। वह हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ी रहती है। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो माँ सही रास्ता दिखाती है। माँ हमारे जीवन की शक्ति, प्रेरणा और आधार होती है। असफल होने पर माँ हमें हिम्मत देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उसकी एक मुस्कान हमारे सारे सुख दुख दूर कर सकती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि माँ हमारे जीवन की आधारशिला है। हमें उनके प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। मातृ दिवस केवल एक दिन का उत्साह नहीं, बल्कि हर दिन अपनी माँ का सम्मान करने की प्रेरणा देता है।
1: जी बिल्कुल, माँ है तो सब है, माँ से ही तो हम हैं। कि चलती फिरती आँखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं कैलाश खेर द्वारा प्रसिद्ध मम्मा गाना फिल्म दशविदानिया से।

0: माँ, मम्मा, मम्मी, आई, माई, कुछ भी उसे पुकार लीजिए, माँ हर शब्द में प्यारी है, माँ कितनी न्यारी है। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता में हमारे विशेषज्ञ हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज इस भेंटवार्ता में हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका कटारे जी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से MPPSC परीक्षा में लाइब्रेरियन के पद पर सिलेक्शन प्राप्त किया है। आइए उनसे उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: चलिए भेंटवार्ता की शुरुआत में ही हम बात शुरू से करते हैं। सबसे पहले यही बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपका शुरुआती जीवन कैसे गुजरा।
2: मैंने अपनी स्कूल शिक्षा सागर के ही आर्य कन्या हाई स्कूल से कंप्लीट की हुई है और मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स विषय से सर हरि सिंह और महाविद्यालय से कंप्लीट हुआ। देन मैंने बीलिव और एमलिव डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है और 2020 में मैंने नेट की परीक्षा क्वालिफाइड की और 2022 में मैंने MPPSC का जब विज्ञापन आया तो मैंने उसको फिल किया और देन 2026 में मैं इसके लिए सिलेक्ट हुई और आज मैं लाइब्रेरियन के पद पर सिलेक्शन हुआ है मेरा।
1: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने इतना चुनौतीपूर्ण MPPSC का एग्जाम पास किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस रणनीति का सहारा लिया था, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी जिससे आपने पढ़ाई की और सफलता हासिल की।
2: ऐसा है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग होती है, लेकिन जब आप मैरिट लाइफ में होते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी आपको चेंज भी करनी होती है और साथ में जब बच्चे हों तो मेरी स्ट्रेटजी कभी कभी चेंज हो जाया करती थी क्योंकि बच्चे कभी बीमार हैं, कभी घर में कोई परिस्थिति अलग हो रही है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा फोकस रहती थी तो हर दिन को मैं अपने हिसाब से अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया करती थी।
1: हर रोज, क्योंकि आपने बताया एक नई स्ट्रेटजी होती थी,
2: हाँ,
1: बार बार वो बदलती होगी, तो समय कैसे चुराती थी आप इतने सारे काम के बीच में।
2: मैम कई बार ये होता था कि जैसे मेरा घर में बच्चे का टाइम कभी चेंज होता था उठने का, या वो ज्यादा देर तक जागता था तो फिर मैं इंतजार करती थी कि उसको जल्दी से जल्दी सुला लूं, अपने घर के काम जल्दी से कर लूं। तो यही रहता था कि मैं दो कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करती थी और जल्दी जल्दी काम करके कभी दोपहर में पढ़ लिया करती थी जब बच्चा सो रहा होता था और कभी रात में 12 के बाद पढ़ाई किया करती थी।
1: जी जी, कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता के पीछे, यानी एक महिला की सफलता के पीछे परिवार के किन सदस्यों का हाथ था।
2: मैम सफलता कभी व्यक्तिगत तो होती ही नहीं है, सफलता तो हमेशा सामूहिक ही होती है। बस ये फर्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे से घर वालों को रेडी कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, थोड़ा मेरे लिए भी चुनौती

0: का सिलेबस आया उसको डाउनलोड किया और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को कलेक्ट करना, नए नए प्लेटफॉर्म को देखना और अपडेट रहना अपने सब्जेक्ट से। उसके लिए मैंने जो भी हमारे सब्जेक्ट एरिया के जो भी लिंक्स हैं उनको देखती थी, क्विज लगाती थी और साथ ही जो मेरे वीलिब और एमलिब के नोट्स थे और जो नेट के समय मैंने पढ़ाई की हुई थी, जो नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो उनको मैंने रिविजन पे डाला। तो यही सब मैम रहा और कुछ जूनियरों का भी सहयोग रहा और टीचरों से भी मैं कंटिन्यू कनेक्ट रही अगर मेरा कुछ भी डाउट रहता था तो।
1: अच्छा, तो आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते होंगे उनको सॉल्व किया होगा?
0: हाँ मैम किया, लेकिन नेट के ज्यादा किए, जो अदर पेपर है जो KBS NBS अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के वो ज्यादा लगाए हुए हैं।
1: प्रियंका जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये एग्जाम का फॉर्म जो है वो कब आता है, इसमें क्या क्या जरूरी होता है, आपको क्या नेट की आवश्यकता होती है या बिना नेट के इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए और ये भी बताइए कि आपको ये जानकारियाँ कहाँ से मिली।
0: बस मैम टीचरों से जुड़ी रही और उनको भी मालूम था कि कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, तो सर लोगों ने मुझे गाइड किया कि MPSC आ गई है और उसके लिए नेट जरूरी है। तो जब उन लोगों ने बोला 2019 में शायद मैं लाइब्रेरी में थी, जब एक दिन गई तो एक सर ने बोला कि MPSC आने वाली है, उस समय मेरा नेट नहीं था, मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि मेरा नेट नहीं है अभी, तो मैंने फिर अपनी नेट की तैयारी स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इतना नेट नहीं होंगी तो इतना बड़ा मौका खो दूंगी। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी और भगवान की कृपा और सबके सहयोग से मेरा 2020 में नेट क्वालिफाइड हो गया और 2022 में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं MPSC में जा सकूं।
1: जी बहुत खूब। प्रियंका जी, आपने जब अपनी तैयारी शुरू की, नेट की तैयारी और खासकर MPSC की तैयारी, इस दौरान आपने कोई कोचिंग ली हो या ऑनलाइन क्लासेस ली हो, टेस्ट सीरीज ली हो, तो उनका भी जिक्र कीजिए, किन किन किताबों से आपने पढ़ा और कहाँ कहाँ से आपने गाइडेंस हासिल किया?
0: नहीं मैम ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ली, हाँ लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे जो डिपार्टमेंट का सहयोग है लाइब्रेरी साइंस वाले, उसका काफी रहा। रिटर्न के लिए तो हमने सेल्फ स्टडी की।
1: यानी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सहारे के आपने इस एग्जाम के पड़ाव को पार किया, और कहते भी हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप खुद इतने कर्मठ और सक्षम हैं तो खुद किस्मत भी आपका साथ देती है।
0: यस मैम बिल्कुल।
1: मैडम आपने खुद से इतनी तैयारी की, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अदर सोर्सेस से आप स्टडी मटेरियल के सहारे पढ़ाई करती रही, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिला, क्या आपने खुद बनाया था या कहीं से मंगवाया था?
0: सेल्फ मटेरियल मेरा मैम खुद ही था, जो नाइट के समय मैंने कलेक्ट किया था तो उसी से मैं पढ़ती रही। अकील अहमद के नोट्स भी काफ़ी अच्छे साबित हुए इस चीज़ में और वहाँ की खुद ही बनाने पड़ते हैं मैम। आप है ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर लिखते हैं, तो आपको है ना एक क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी एक बुक को तो सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ ही प्रिंट फॉर्म को कंसर्न करें।
1: जी प्रियंका जी, लगातार प्रयास के बाद आपने सफलता प्राप्त की और आप एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप उन लोगों को कोई संदेश दें जो थोड़े से ही प्रयास में हार मान लेते हैं, एक बार सफलता नहीं प्राप्त हुई और बस छोड़ दिया।
0: हाँ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा जरूर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको अधूरा छोड़ रहे हैं या पूरा कर रहे हैं, और जब आप उसको पूरा करने का ठान लेते हैं ना तो स्थितियाँ ऑटोमेटिक आपके पक्ष में हो जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मूवी का भी डायलॉग है ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने के लिए लग जाती है।
0: यस मैम बिल्कुल।
1: आपने गृहिणी होते हुए भी एक सफलता पाई है। हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और या फिर करियर का अंत मान लेती हैं कि अब जो होना था सो हो चुका है। ऐसी महिलाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि शादीशुदा होना या गृहिणी होना कोई आपकी सफलता में बाधक नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बस ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है और बस आपको हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते रहना है कि आप भूलें ना, और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चिंत ही आप सफलता हासिल कर पाएंगे।
1: जी प्रियंका जी, एक महिला होने के नाते आपको कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा हो तैयारी के दौरान, तो हमसे बिल्कुल साझा करें आप।
0: मैम ऐसा है कि चुनौतियां तो हर रोज आती हैं और कभी कभी बड़ी भी आती हैं, जब आपको लगता है कि शायद आपको अपना लक्ष्य स्किप करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ने का सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिग्रेट होता है। तो मैं यही चाहती थी कि वो रिग्रेट सन मुझे कभी ना रहे, मैं कभी उसमें ना रहूं कि मैं कर नहीं पाई, इसलिए मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी।

0: धैर्य रखा कि हाँ सफलता देर से मिलेगी लेकिन जरूर मिलेगी। बस यही है कि आप हमेशा अपना पेशेंस बनाए रखें और अपनी कोशिश जारी रखें।
1: बिल्कुल सही बात है, अपने सपनों को जिंदा रखना सीखिए, है ना।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
1: जैसा आपने बोला कि दिल में आग होनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल मैम, दिल में आग हो तो आप अपनी सफलता को सच बना सकते हैं, क्योंकि आप जब कुछ करने के लिए होते हो ना आगे, तो कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव को आप सीख की तरह लीजिए और पॉजिटिव को आप अंदर ग्रहण कर लीजिए, बस इतना ही होता है
1: जी। प्रियंका जी, अब आप जब चयनित हो चुकी हैं MPPSC में, तो हम जानना चाहेंगे आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आप क्या करना चाहेंगी।
0: मैम मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करूं और लड़कियों को इसका महत्व समझाऊं कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं ना, तो आप कैसे मतलब अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी तो होना चाहिए। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कम से कम आप एक सिंबल तो क्रिएट कीजिए जो लोगों को प्रेरणा दे सके कि आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी प्रियंका जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे जो श्रोता हैं, हमारे युवा श्रोता हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ की महिलाएं हैं, गृहणियां हैं, उन सबको आप छोटा सा संदेश दीजिए।
0: मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आपको अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।
1: क्या बात है, सपनों को कभी छोटा मत कीजिए, मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। प्रियंका जी की कहानी यही कहती है कि आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको पाकर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपकी कहानी हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक होगी। हम आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
0: मैम आपके लिए भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे सकूं।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता में प्रियंका कटारी से बात कर रही थी हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सुब्रता यादव। साथियों अब आपसे अलविदा लेने का वक्त हो चला है, पर जाने से पहले एक गुजारिश है आपसे। आज आप सब एक बार फिर अपनी माँ को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी खास हैं वो आपके लिए, उन्हें गले से लगाइए और उन्हें देख जी भर मुस्कुराइए। तो अब मैं चलती हूँ, खुश रहिए, ख्याल रखिए, समय की इज्जत कीजिए और हर चुनौती का डटकर सामना कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के युवाणी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्रिया दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे थे युवाणी, उपासना की आवाज़ में।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम। मैं सागर हूँ।
1: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
2: मैं सागर हूँ।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
5: और नासिर का
1: नमस्कार। सागर का हर चौराहा हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302999।

0: 1960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
1: आज का ये अंक केंद्रित है जल संरक्षण पर। हमने बातचीत की नगर निगम कमिश्नर महोदय श्री राजकुमार खत्री जी से।
2: ये गर्मी का मौसम आता है तो एक जल संकट बड़ी परेशानी का सबब बनता है। ऐसे में यदि हमारी तरफ से ही कुछ लापरवाहियां हो जाएं तो ये बहुत ही दुखदायी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जल प्रदाय तो किया जा रहा है लेकिन वो सुचारू रहे और उसका वेस्टेज ना हो, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहें?
3: देखिए, इसको हम दो तरीके से, दोनों सीजन को एक साथ जोड़ के जो है बात करेंगे कि जो हमारा भी गर्मी का जो सीजन आ रहा है और जो बारिश का जो सीजन आ रहा है, इसमें मैं तीन बातें एक साथ करना चाहूंगा कि न केवल जो हमारे द्वारा जो जल प्रदाय किया जा रहा है उसको आम व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसका आपको उसको उपयोग करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात का और जोर देना चाहूंगा कि आने वाले समय में निकट में ही बारिश भी आएगी, तो अपने यहाँ पर अपने घरों की संरचना इस तरीके से जो है रखिए जिससे जल संवर्धन भी हो सके, जिसमें जल का बचत भी हो सके, जिसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतर जो है तरीका है कि अपने घर के पास कोई एक भी आप गड्ढा ऊपर से जो हमारी छत वगैरह का जो पानी है पाइप के माध्यम से जो है थोड़ा सा कंकड़ पत्थर उसमें डालकर एक गड्ढा खोद कर उसमें वाटर को जो है संचय किया जा सकता है, जिससे कि वाटर लेवल जो है अच्छा रहेगा और हमें जो है आपको वाटर प्रदान करने में आसानी होगी और आप लोगों को भी जो धरती के द्वारा जो चीज हमको मिलती है वो धरती में सेव करने में हमको मदद मिलेगी।
2: इसके अलावा जो पाइपलाइंस यदि टूटी हैं तो उन लोगों को जागरूक नागरिक बनके बताना चाहिए, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: निश्चित रूप से इसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक शिकायत शाखा है, अगर कोई भी जो है इसके लिए एक नंबर भी है उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। हमारे जो है एक बेहतर उसका जो वाटर प्रबंधन चाहे वो सीवर का हो या जल का हो दोनों के लिए हमारे पास हेल्पलाइन है, तो आम आदमियों से आग्रह है कि कृपया कर जो है इस तरह की कहीं भी जो है आपको पाइपलाइन टूटी दिखती है चाहे वो जल की हो या सीवर की, तो कृपया अवगत कराएं।
2: और जो कुएं हैं वो एक बहुत देन है हम लोगों के लिए, उनको भी साफ सुथरा रखें, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, वर्तमान समय में कुओं की प्रासंगिकता इस रूप में एक बहुत अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें जो वाटर लेवल जो मेंटेन रखना है। हम हालांकि जल प्रदाय जो है आजकल राजघाट के और ट्रीटेड वाटर हमारे द्वारा आम आदमियों को सबको दिया जाता है, बट वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए कुआ हमारे महत्वपूर्ण जो है धरोहर है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है, तो उनको हमें साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, उनमें कचरा नहीं डालना चाहिए, उनको जो है किसी भी तरीके से गंदा नहीं करना चाहिए।
1: और आइए अब चलते चलते सुनते हैं जल के महत्व पर ये लोकगीत। गा रहे हैं शालिक राम।

0: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
1: और नासिर को।
0: नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
1: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खीर का गाया हुआ एक गीत। संगीत दिया है नरेश कामत ने।
4: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री रहता है ना।
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुलजार का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज के स्वर में। संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने। कार्यक्रम संगीत सरिता में अब आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन का गाया हुआ ये गीत।

शंकर महादेवन के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 6 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के चार

0: इनके निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। समाचार के बाद आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। अशोका फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाजें अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई की, संगीत अन्नू मलिक का।

0: धर्मघटा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ें थीं, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे नौशाद। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: तराने नए पुराने।

लता मंगेशकर की आवाज में आप लैला मजनू फिल्म का गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं राजा मेहंदी अली खान की शब्द रचना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। संगीत है मदन मोहन का। फिल्म का नाम दुल्हन एक रात की।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे देख कबीरा रोया फिल्म से। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं साहिर लुधियानवी की शब्द रचना रवि की बनाई तर्ज पर। उमराह फिल्म के लिए स्वर है महेंद्र कपूर का।

0: महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: FM बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं अरविंद सोनी का गाया देवी गीत।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
3: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
2: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
3: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
4: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी। अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत।

राजू पटेल और साथियों का गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया के स्वर में ये लोकगीत।

इसके साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी सागर है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के चार लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की

0: पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। शाम के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

इस सभा में शाम 7:30 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी ग्राम सभा कार्यक्रम। सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे डगर विकास की। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति है। रात 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। मन चाहे गीत सुने जा सकेंगे रात 9 बजे से। रात 9:30 से प्रसारित होंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में। कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण समय सुबह 7:00। महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम बिंदिया सुबह

8 बजे। अनूपचार सुखी संसार ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा सुबह 9:50 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा सुबह 11 बजे।

कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा शाम 5:02 पर। सदाबहार गीत सुनेगा शाम 6:30 पर। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी ग्राम सभा कल शाम 7:30। मन चाहे गीत सुने जा सकेंगे रात 9 बजे से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

FM बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, कदे फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में

0: लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें थी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद को भी 3 पुरस्कार मिले।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यदि भी संसदीय क्षेत्र में बनेगी, 1,000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीने के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
4: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है।

गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय आईटीआई हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं देवकी नंदन सकवार की गाई गणेश वंदना।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
3: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
2: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
3: जोयल के असली पत्थर के लिए आएं ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

महेश अहिरवार से अभी आप सुन रहे थे ये किसानी गीत। इसके साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। शाम के 7:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।

0: और अब श्रोताओं 7:30 बज गए हैं और अब हम शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। किसान भाइयों, आज का हमने विषय रखा है जायद की उद्यान की फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है, वो हम तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
0: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सजीव टेलीफोनिंग कार्यक्रम है। आप सीधे हमसे जुड़ते हैं टेलीफोन के माध्यम से। एक बार पुनः हम आपको टेलीफोन नंबर बता दें, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 टेलीफोन नंबर है 2660902। एक और दूसरा नंबर है हमारा 2660903। इन नंबर्स पर आप टेलीफोन लगाएं और सीधे हमसे जुड़ेंगे, हमारे विशेषज्ञ से बात करेंगे। आपसे एक बार जरूर कहेंगे कि आप विषय से संबंधित सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है। विषय हम पुनः दोहरा देते हैं, जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। इस समय यानी कि आपको जायद की फसलों में क्या काम करने हैं, खेत में क्या काम करने हैं, और जायद की फसलों जो उद्यानिकी फसलें खासतौर से, उनमें पोषक तत्व का किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे। हमारे किसान भाई यदि लाइन पर आते हैं तो उनके सवालों के जवाब भी डॉक्टर विजय अग्रवाल जी देंगे। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय रखा हमने, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इस समय खेतों में क्या काम चल रहा है।
2: देखिए, अभी इस समय अगर जायद की बात करते हैं तो इस समय बहुत सारी सब्जियां हैं जो खेतों में लगी हुई हैं, जो विशेषकर अपन देखते हैं कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि कद्दू हुआ, लौकी, गिलकी, तोरई, करेला, इसके अलावा खरबूज और तरबूज भी बड़े पैमाने पर इस समय खेतों में लगे हैं। इसके अलावा भिंडी की फसल भी लगी हुई है, तो इस समय उनमें फलन भी आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं, साथ ही साथ वो उनकी तुड़ाई होकर बाजार में भी जा रही है। तो इस समय उसमें बहुत सारे देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे जो उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत जो बगीचे हैं इस समय, जो हमने पहले लगाए थे, उनमें भी कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है। और साथ में
0: डॉक्टर साहब, हम जी जारी रखेंगे, किसान भाई का टेलीफोन हम लेते हैं।
2: जी
0: नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। आप नाम बताएं अपना।
3: जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी, आप शुभ नाम बता दें, स्थान भी बता दें हमें।
3: जी, ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: हाँ कटारे जी, आप सवाल करें।

0: जी सर, से मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी उद्यान की फसलें लगी हुई हैं किसान भाइयों की, तो उसमें ये जानना चाह रहे थे कि जो जैविक खाद है उनमें कौन कौन सी खादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो आजकल दुकान पर भी मिलते हैं बाल्टी वगैरह आती हैं जो। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे सब्जियाँ हैं तो दोपहर में पानी देने से कोई नुकसान तो नहीं है, जैसे गोभी या फिर इसमें भिंडी के बारे में जानना चाह रहे थे। गोभी तो अभी नहीं लगी है, गलती से बोल दिया, भिंडी और तरबूज लगा हुआ है।
1: देखिए, पहली चीज जो है आपने बोली है कि अभी इस समय पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं दोपहर के समय। दोपहर के समय पानी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे पौधों पे नुकसान होगा। आपको पानी देने का सबसे अच्छा समय है कि आप सुबह सुबह आप पानी दीजिए और 8-10 बजे तक दे दीजिए पानी। इसके अलावा बाद में देना है तो शाम को 6 बजे के बाद पानी देना ज़्यादा उचित रहता है। दोपहर में पानी देने से पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है। अब दूसरी बात आपने बोली है कि आप इसमें जैविक पोषण प्रबंधन करना चाहते हैं, तो सब्जियों में सामान्यतः इस समय जो सब्जियां लगी हैं उसमें कई सारी जैविक चीजें आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जीवाणु खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसमें। इसके अलावा अपन चूंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और फॉस्फेट वाली खाद भी देते हैं, तो उसके लिए फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSB होती है उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जीवामृत जैसी जो होती हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, उनको भी प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं।
2: जी, तो विपिन कटारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी नमस्कार
2: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: शिमला से राकेश जी बताएं क्या समस्या अपनी।
3: जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम प्राकृतिक खेती किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, खासकर जो है शिमला मिर्च और टमाटर।
1: देखिए, आप है ना प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी है ना ये तो गाय गोबर इन पर प्राकृतिक चीजों पर आधारित रहती है, तो इन सबसे पहले अपनी खेत में आपको जो भी आप रासायनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं पहले, तो सबसे पहले उनका प्रयोग आपको खेत में बंद करना पड़ेगा है ना। उसके बाद आपको जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उससे उसका ही पोषण तत्व जैसे जीवामृत वगैरह, घन जीवा अमृत, उसका आपका प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा जो इसमें कीटनाशक या बीमारियों के लिए जो दवाओं का प्रयोग होता है वो भी आपको जैविक पद्धति से ही तैयार करनी पड़ेगी प्राकृतिक रूप में, जैसे नीमास्त्र वगैरह हुआ, पत्तियों का घोल हुआ, 5 पत्ती घोल हुआ, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक का आपको प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो रासायनिक पोषक तत्व हैं जैसे खाद हैं उनका प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है।
2: तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिमला हिमाचल प्रदेश से टेलीफोन लगाया और जो आपकी जिज्ञासा थी उसका समाधान डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने कर दिया है। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम, सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है इस समय, हेलो ग्राम सभा।
4: जी सर नमस्कार
2: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
4: मैं मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जिला गोना मध्य प्रदेश से।
2: धाकड़ जी बताएं क्या समस्या है अपनी।
4: मेरी समस्या ये है सर जी, ये मिर्ची है कुछ पेड़ मिर्ची की वो बताए
2: हाँ।
4: उसमें बैगन भी है और टमाटर भी है
2: हाँ हाँ।
4: उसमें मतलब कुकड़ा है,
2: कुकड़ा, ये कुकड़ा रोग की कुछ वजह होगी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको।
1: देखिए अभी इस समय जो है सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में टमाटर जैसी फसलें जो होती हैं वो अभी उपयुक्त नहीं होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां लगती है। मिर्ची में जो आपने बोला कुकड़ा लगने का, वो कुकड़ा लगने की समस्या आती है और ये वायरस जनित रोग होता है। और आप देखोगे पौधे के पास जाओगे, पत्तियों को हिलाओगे, पौधे को हिलाओगे तो सफेद मक्खियां उसमें उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो उसका अपन को नियंत्रण करना है जिससे कुकड़े का जो समस्या है या जो चूड़ा मुड़ा जो बीमारी लग रही है उस पर नियंत्रण हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में नीम के तेल का स्प्रे करें, 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा रासायनिक उपचार के रूप में इमीडा क्लोप्रिड नाम की दवा बाजार में मिलती है, इसकी भी 0.3 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, इससे कुकड़े पर नियंत्रण हो जाएगा।

0: जी, तो मांगीलाल धाकड़ जी, आपने गुना मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया और मिर्ची के पेड़ में जो कुकड़ा की समस्या है उसके बारे में समस्या आपने बताई। डॉक्टर साहब ने आपकी समस्या का निदान भी बताया। लगातार हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, देखिए हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी
1: हेलो,
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें हमें।
1: गुड्डू चौबे बोल रहे, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
0: चौबे जी बताएं क्या समस्या है।
1: समस्या नहीं, हमारे जो प्रश्न है तो महोदय जी से,
0: जी
1: यह सोयाबीन अपन बीज उपचार करने तो देसी नुस्खा माने जैविक वार बताएं।
0: बिल्कुल बता रहे हैं।
2: हाँ देखिए, सोयाबीन में अगर जैविक उपचार करना है तो एक जैविक फफूंदनाशी आता है ट्राइकोडर्मा, है ना। तो किसी भी, आप जैसे आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है, सागर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके वैज्ञानिक से संपर्क स्थापित करके आप ट्राइकोडर्मा नामक आप इसमें जो जैविक फफूंदनाशी होता है उससे आप उपचार करें। और इसके अलावा आप उसमें, इसके अलावा गोमूत्र से भी उपचार कर सकते हैं। तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके अच्छा ट्राइकोडर्मा प्राप्त कर ले और उससे अपनी सोयाबीन को उपचारित करके लगाएं।
0: तो चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, टेलीफोन लगाया आपने। और अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: हेलो,
0: हाँ जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं।
3: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमनोरा जिला छतरपुर से बोल रहा हूँ, कमचंद यादव।
0: यादव जी बताएं क्या समस्या है।
3: जी सर, मूंग बोई है तो उसके पत्ता गुड़िया रहे हैं और भिंडी है जो कि थोड़ी कीड़ा लग रहा है, किराई हो रही सर भिंडी।
0: अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब बताओ।
2: देखिए मूंग में, तो मूंग में आपको ध्यान रखना है कि मूंग में जो अभी पत्तियां पीली पड़ने की, थोड़ा सा मुड़ने की, तो इसमें वायरस जनित रोग लगने की संभावना होती है, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो उसमें अपन को क्या करना है, उसमें आप अगर वैसी ज्यादा समस्या आ रही है तो नीम के तेल का छिड़काव कर दें, 5 ml 1 लीटर पानी के मान से आप इसमें छिड़काव कर दें, 15 लीटर का पंप है, 75 ml उसमें छिड़काव कर दें। और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा, तो एमिडा क्लोप्रेड या थायोमिथोक्सान नाम की दवा आती है रासायनिक उपचार के लिए, उसको आप उसका उपचार कर, उसका छिड़काव कर देंगे तो वो ये समस्या जो आ रही है वो नहीं आएगी इस समय।
0: तो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में, शुभ नाम बताएं अपना।
4: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, आप शुभ नाम बताएं अपना।
4: बिल्कुल, मैं गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: नामदेव जी आप सवाल करें।
4: जी सर जी, मेरा ये सवाल है कि बैगन लगे हैं मेरे, छोटे छोटे होते हैं जो देसी बैगन, वो लगाए मैंने, उसमें क्या हो रहा है कि अभी उसमें इल्ली का प्रकोप था 15 दिन पहले, तो मैंने कोई भी बाजार से दवाई ना लेके हुई मैंने क्या किया, नीम का तेल का छिड़काव कर दिया था तो राहत मिल गई थी। अब 2-3 दिन से फिर से इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो नीम का तेल का फिर से उपयोग करूं या फिर उसमें कोई दवाई डालूं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मिर्ची में, अभी मिर्ची आने को तैयार थी लेकिन अभी 2-8-10 दिन पहले बारिश के खातिर वो मिर्ची का फूल झड़ गया, तो अब उसमें मिर्ची कौन सी ऐसी दवाई डालूं जिससे मिर्ची का प्रकोप झड़ने का फिर ना हो सके।
2: देखिए इस पे है ना, पहले बैगन की बात करते हैं। नीम का तेल बिल्कुल सही रहता है ना, नीम का तेल का आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नीम के तेल से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसमें एमामेक्टिन बेंजोइट नाम का रासायनिक दवा आती है, 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। मिर्ची की जहां तक बात है फूल झड़ने की है, तो नमी को थोड़ा सा बना के रखिएगा, तापमान बढ़ने से फूल झड़ने की संभावना होती है। कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन की कमी होती है, तो उससे भी फूल झड़ने की समस्या आती है। तो उसके लिए आप बोरेक्स जो रहता है 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें सूक्ष्म, आपने इसमें पोषक तत्व नहीं दिए हैं, तो 19-19-19 जो आता है घुलनशील उर्वरक, उसका भी 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। संभवतः तापमान अधिक होने के कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है।
0: तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले किसान श्रोता का हम लेते हैं टेलीफोन, सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले

0: में आपका स्वागत करता हूँ।
1: वैशाली जिला बिहार। डॉक्टर साहब आप अपना नाम पुनः दोहराएंगे?
0: डॉक्टर सितारे हूँ।
1: जी जी जी, अब आप सवाल करें डॉक्टर साहब से।
0: जी, भिंडी बोया था और कद्दू भी।
1: हाँ,
0: फसल तो बहुत बढ़िया फला, पानी बरसने के बाद उसमें कीड़ा जैसा लग गया है, कीड़ा भागता नहीं है।
1: अच्छा
2: जी जी, वो क्या होता है, कद्दू हुआ, कद्दू में क्या होता है कि फल मक्की का प्रकोप हो जाता है, और फल मक्की का जो प्रकोप होता है वो पौधे के जो फल होते हैं उसमें छेद करके अंडा दे देती है, और फल अंदर अंदर खराब होके गिर जाता है, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो फल मक्की के नियंत्रण के लिए आप सबसे अच्छा होता है नीम का तेल का प्रयोग करें, या फल मक्की के प्रपंच आते हैं बाजार में, उनका आप एक एकड़ में 5-6 प्रपंच जगह जगह पर आप लटका देंगे, तो फल मक्खी पर जो नुकसान हो रहा है फलों पे, वो नुकसान नहीं होगा, फल सड़ेंगे नहीं, और जो सड़े हुए फल हैं या नुकसान ग्रसित फल हैं उनको आप निकाल कर अलग कर दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए, तो उससे थोड़ा सा ये समस्या है वो कम हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया वैशाली नगर बिहार से, और लगातार हमारे पास किसान भाइयों के टेलीफोन आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हर किसान की जो समस्या है उसका निवारण करें। एक टेलीफोन हम लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसी कारण से आवाज़ नहीं आई, हम तक नहीं पहुंच पाई, खैर बड़ा। डॉक्टर साहब लगातार जो हमारे किसान भाई इस समय जो है सामूहिक तौर पर जो कार्यों की जानकारी ले रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि हमारे जो सुन रहे हैं दूसरे किसान भाई उनको भी लाभ मिल रहा है। अब देखिए हमें संकेत मिल रहा है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार।
3: जी सर नमस्कार,
1: आप शुभ नाम और स्थान का नाम हमें बता दें।
3: जी मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया भराई, तहसील बेगवन, जिला राजसन से बोल रहा है। सर
1: चढ़ार साहब क्या सवाल है आज का?
3: सर ये बोल रहा है,
1: हाँ?
3: इस समय सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में बनी जा सकता है,
1: बता रहा है।
2: देखिए सोयाबीन की तो बहुत सारी किस्में हैं आपके क्षेत्र में, जैसे आपने बेगमगंज की बात करी, तो आप जो वैसे तो आपके इधर कितने समय की आपको फसल बोनी है, जैसे कम समय की 93.05 होती है, थोड़ा सा ज़्यादा समय की और थोड़ी ऊंची बढ़ने वाली 21-72 किस्में होती हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है ना, आप कितनी लंबी फसल या कितने समय की फसल बोना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अच्छा होगा कि जो आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है नखतरा में, वहां के वैज्ञानिकों से आप चर्चा कर ले, और उनके पास कौन सा आपके क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध है उस आधार पर अभी से बीज ले ले, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी भूमि के हिसाब से, और फिर आप अपने क्षेत्र में वो किस्म को लगा ले।
1: तो चढ़ार साहब आपकी समस्या का निदान हो चुका है, अगले किसान भाई का टेलीफोन। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
3: जी सर मैं जगत सिंह चढ़ा, ग्राम पिपलिया बेगवन, तहसील रायसेन से बोल रहा है सर, पूरी बात नहीं हो पाई थी।
1: अच्छा अच्छा हाँ, चलिए
2: अभी हमने आपको जो किस्में बताई हैं, और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है नखतरा में आपके बेगमगंज के पास, वहां पर आप वहां के जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो सोयाबीन की फसल देखते हैं, आप उनसे संपर्क कर ले, और जो बीज की उपलब्धता आपके जिले में आपके ब्लॉक में कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में है, उनके द्वारा जो अनुशंसित किस्में हैं वो आप लगाएं।
1: जी सर। तो चढ़ार साहब अब तो आपकी समस्या का समाधान मिल चुका है आपको, और अगले किसान भाई का टेलीफोन हम लें, इससे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि इस समय जो है फसलों में जो है कुछ कीट व्याधियां देखने को मिल रही है।
2: हाँ, इस समय क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है तो कीट व्याधियां बहुत आती हैं, जैसे कि अपन ने अभी चर्चा के दौरान भी देखा है, जो खरबूज तरबूज और करेला लौकी गिलकी लगी, इसमें फल मक्खी का प्रकोप आता है, तो इसके लिए किसान भाइयों को जहां पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं वहां पर फल मक्खी का प्रपंच लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे भिंडी जैसी फसल है, इस समय भिंडी बाजार में आ रही है और किसान भाइयों के इधर बड़े पैमाने पर लगी है, वहां पर उसमें क्या होता है, लाल मकड़ी का प्रकोप इस समय दिखाई देता है जिससे पत्तों पे नुकसान होता है, फल पे नुकसान होता है, तो उसके लिए आप अच्छा कोई कीटनाशक हुआ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एवामेक्टिन आता है उसका आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फफूंदी रोग भी इस समय दिखाई देता है, उसके लिए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग

0: कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि सामयिक में अगर फलों की अगर बात करते हैं तो फलों में इस समय आम बाजार में आ रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसकी सही समय पे तुड़ाई करके बढ़िया उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके मार्केट में बेचें जिससे रेट अच्छा मिले।
1: रेट अच्छा मिले और ये करना भी चाहिए। एक
0: जी
1: किसान भाई का हम टेलीफोन ले
0: जी
1: लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं अपना। हाँ जी,
2: मैं गोपाल जाटव जिला शिवपुर,
1: जी
2: शिवपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: शिवपुर मध्य प्रदेश से जी सवाल करें।
2: जी मैं सोयाबीन बोना चाहता हूँ खेत में, तो कौन सी किस्म का सोयाबीन बोए?
0: देखिए सोयाबीन की बहुत सारी किस्में होती हैं, है ना। ये आपके क्षेत्र के आधार पर निर्भर करती हैं, सारी किस्में हर क्षेत्र में नहीं चलती हैं, तो आप अपनी भूमि के हिसाब से अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके आपके क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त किस्म है वो किस्मों को आप बोए। और ध्यान रखें कि जो भी किस्म आप लें वो मंडी से आपको नहीं लेना है, आपको कृषि विभाग से लेना है या कृषि विज्ञान केंद्र से ही आपको किस्में लें, या फिर बीज निगम से भी आप किस्में ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपको एक किस्म रहती है, तो सर्टिफाइड बीज जो होता है प्रमाणित बीज को ही लेके और बीज उपचार करके ही आप किस्मों को बोए।
1: जी तो जाटव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया, डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का उत्तर दिया। लगातार हमारे किसान भाई जो है बने हुए हैं, टेलीफोन कॉल लगा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और इसकी वजह ये भी है डॉक्टर साहब कि आज का जो विषय हमने रखा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा है। आज का विषय है जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। और श्रोताओं हम आपको बता दें डॉक्टर विजय अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। पुनः एक किसान भाई का टेलीफोन आ रहा है, हम चलिए उनका टेलीफोन कॉल। जी नमस्कार, हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग गया, शुभ नाम बताएं।
3: डॉक्टर साहब से हम ज्यादा जानकारी चाह रहे थे, अभी पौधे लगाना है जी, जैसे मिर्ची है, भट्टा है, टमाटर है, तनिक अभी समय है कि नहीं है लगा अभी?
1: पहले आप नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा हमें, आप अपना शुभ नाम।
3: करकट जिला सागर से।
1: जी बिल्कुल,
0: देखिए अहिरवार जी अभी आप इसको लगा सकते हैं। अभी पहले तो आपको है ना नर्सरी, अभी तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 10-15 दिन को आप रुक जाइए। और खेत में ये समय होता है कि जब अपन खेत को अच्छे से तैयार कर ले और जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि को खेत में आप इस समय मिला के ले लें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर पे आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं, विशेषकर आप टमाटर इस समय लगा सकते हैं, है ना, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं। इसकी जो आपके क्षेत्र में जो किस्में प्रचलित हैं या जिसका बाजार भाव अच्छा मिलता है उस किस्मों को आप उसके बीज आप बो दीजिए नर्सरीज में, और लगभग जैसे ही पानी शुरू होता है 15 जून के आसपास उसको खेत में लगा दीजिए। तो अभी खेत की तैयारी कर लीजिए, गोबर की खाद मिला लीजिए, बीज ले लीजिए और अच्छी तरह से नर्सरी बना के रोपा डालने की तैयारी आप कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा 10-15 दिन, और जहाँ पर आप नर्सरी बनाएं वहाँ पर पानी ना बैठता हो ये ध्यान रखना है, और धूप से बचाने के लिए ऊपर शेड या थोड़ी छाया अवश्य कर लें आप।
1: तो अहिरवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
4: सर जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप स्थान भी बता दें हमें, अपना नाम बताकर।
4: भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
1: साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या समस्या है।
4: आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है।
4: बिल्कुल सर, हम ये कह रहे थे हमारी मूंग लगी हुई थी।
1: हाँ हाँ हाँ,
4: तो उसमें इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, वो पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं मूंग के।
1: अच्छा, मूंग में इल्ली लगी हुई है और पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं।
4: हाँ पत्ते भी पीले पीले से दिख रहे हैं।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको
0: देखिए
1: बता रहे हैं।
0: पत्ते पीले होने।
4: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, देखिए पत्ते जो पीले हो रहे हैं और जगह जगह बीच में कहीं कहीं पर इस तरह से पीले हो रहे हैं, तो वो तो वायरस जनित रोग होगा, और वो फैलता है जो रस चूसक कीट होता है, विशेषकर जो सफेद मक्खी होती है वो रोग को फैलाती है। तो आपको नियंत्रण करना है, खेत में जाके निरीक्षण करिए, पौधे के पास बैठिए, थोड़ा सा हाथ से हिलाइए, अगर मक्खी उड़ रही है पत्तियों के पीछे रहती है, तो आप समझ लीजिए कि सफ़ेद मक्खी वो नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए आपको रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रेट थायोमिथोक्सोन नाम की दवाई बाजार में मिलती है, उनका आप छिड़काव कर दीजिए, है ना, इस समय कर दीजिए छिड़काव, जिससे इसमें नियंत्रण हो

0: जाएगा और बहुत ज्यादा जो पत्ता पीला ऊपर से पीला पड़ रहा है तो उस
1: हाँ
0: पौधे को भी निकाल देंगे तो आगे चल के समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, जहां तक आपने इल्ली की बात करी है तो आप अच्छा रहेगा क्योंकि ये मूंग कम समय की होती है और इल्ली के लिए आप नीम के तेल का अगर स्प्रे करते हैं, है ना, उसका स्प्रे सबसे अच्छा रहता है। और इसके लिए 75 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए, तो इससे सफेद मक्खी पे भी कुछ हद तक नियंत्रण होगा और साथ में जो रहेगा आपकी इल्ली की समस्या पर भी नियंत्रण हो जाएगा।
2: तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं, सुनते हैं उनकी क्या
1: हेलो
2: समस्या है। जी नमस्कार, आप शुभ नाम
1: हाँ,
2: बताएं।
1: नमस्ते सर जी,
2: शुभ नाम बताएं। और सबसे पहले तो आप अपने रेडियो या जिससे भी आप सुन रहे हैं उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: हाँ सर जी, कर दिया जी, सब फोन से सुन रहे थे सर
2: जी। शुभ नाम बताएं अपना। हाँ शुभ नाम बता दें अपना।
1: हाँ सर, परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर, कन्या मलाजखंड बालाघाट जिले से।
2: जी बालाघाट जिले से, बताएं क्या समस्या।
1: सर जी, बरबट्टी लगाए सर अभी बाड़ी में।
2: हाँ
1: तो उसमें सर मैनी जैसे लक्षण है सर, क्या करना चाहिए सर।
2: अच्छा, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे क्या समस्या है। मतलब
1: सर वो मैनी जैसा जो रोग होता है ना सर, वो काला काला रहता है सर, जीव वो नजर आ रहे हैं सर जी।
2: तो पत्तियों पर आ रहा है, फलियों पर।
1: फलियों पर सर जी।
2: अच्छा
0: अच्छा देखिए, अगर हम समझ पा रहे हैं तो अगर वो जो आप देख रहे हैं काला काला, वो हो सकता है कि एफिड का भी अटैक हो, पूरी पत्तियां उसमें काली हो जाती हैं, पूरे जो तने रहते हैं उस पर काले काले छोटे छोटे से बारीक बारीक कीट हो जाते हैं। अगर वो है ना, अगर उस तरह का आपको दिख रहा है, पूरी जो शाखाएं होती हैं उस पर पूरा काला काला सा हो जाता है और आगे चल के वो सूखने लगती हैं शाखाएं जो होती हैं और फलन उसमें कम आता है, तो वो रस चूसक कीट के कारण होता है ना। तो उसको आप है ना, उसके लिए कोई दवाई का उपयोग कर लीजिए उस समय इसमें, है ना, कोई भी अच्छा नीम का तेल यूज कर दीजिए या इमीडा क्लोप्रेट जो मिलती है बाजार में। इल्ली वाली दवाई मत डालिएगा, रस चूसने वाली जो दवाई होती है उसका आप प्रयोग करिए, एक आध छिड़काव में ही वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी, है ना।
2: तो परशुराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और इतनी बढ़िया जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने आपको दी। और एक किसान भाई का टेलीफोन हम और ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ जिला सीवर तहसील श्यामपुर से।
0: नमस्कार नमस्कार
2: जी, दांगी जी आप सवाल करें।
3: सर मेरा ये सवाल है सर, हमने मूंग लगाई है तो सर उसमें ऐसी शिकायत आई है कि सर करीबन 20 फीट लंबी और दो चार मानो 20 फीट लंबाई में, तो सर उतने पेड़ ऑटोमेटिक सूख गए और पूरी फसल ठीक है, मालूम नहीं क्या कारण हुआ।
0: देखिए वहाँ पर है ना कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए जड़ में कुछ प्रॉब्लम आई होगी जमीन के उस हिस्से में जो सूखने वाला या वेल्ट है या उकता की समस्या वहाँ पर हो सकती है ना, ये तो वहाँ पर देखने पे स्पष्ट होगा। अगर पौधे के सूखने की समस्या है तो उसमें अभी आप इस समय जो उकता होता है या वेल्ट होता है उसका निवारण नहीं होता है, वो तो ये है कि आपको इसको फसल को निकाल के खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर जब पानी की कमी होती है और जमीन हल्की होती है वहाँ पर दीमक के कारण भी ये समस्या आ जाती है, लेकिन इस समय खड़ी फसल में उसको कोई दवाई देने से उसको अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली बार खेत को अच्छे से तैयार करें, अब तो गर्मियों की जुताई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी फसल लगी है, लेकिन इस फसल को निकालने के बाद खेत की अच्छी से हकाई जुताई उसमें कर लेना, है ना। और जो भी आपके अगर उधर पर कोई कृषि से संबंधित कृषि विभाग का है तो उसको देख लीजिए, जड़ को वो पौधे को निकाल के देख लीजिए, जड़ उसकी काली हो रही सूख रही है तो उससे समझ में आएगा कि दीमक के कारण है या उकता के कारण है या और कोई कारण है उसमें।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी, आपने टेलीफोन लगाया और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और लगातार जो है टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, एक किसान भाई का और टेलीफोन ले सकते हैं। जी शुभ नाम बताएं अपना।
4: जी नमस्ते सर।
2: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना और स्थान बताएं।
4: ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: जी आप सवाल करें।
4: सवाल ये चीज सर, अभी उड़द की खेती कर रहे हैं हम लोग।
2: हाँ
4: तो बढ़िया सर, उड़द तो अभी जैसे पिछले बार कॉल किया, बढ़िया सजेशन दिए थे, उस हिसाब से भी खेती कर रहा हूँ
2: जी।
4: तो अभी सर फूल आ गए, आ रहे हैं फूल उड़द में।
2: अच्छा,
4: तो हाँ, तो उसमें अच्छे फूलों की बढ़वार के लिए कौन सा दवाई इस्तेमाल करें, क्या सावधानी रखें, उस संबंध में जानकारी चाहिए थी सर।
2: बिल्कुल बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
0: देखिए, फूल जब आता है तो बहुत ज्यादा चीजें, यानी आपको नमी खेत में बनाए रखे, और उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कोई कीड़े जो है रस चूसा कीट का उसमें प्रकोप ना हो।

0: इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस समय अगर कोई बीमारी नहीं है और फूल सही है तो इसमें कोई कीटनाशक का इस समय प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। अगर संभव हो इसकी बढ़वार के लिए तो आप 052-34 जिसमें फॉस्फोरस और पोटाश दोनों होता है उसका लगभग 5 ग्राम पाउडर के रूप में आता है पोषक तत्व होता है उसका आप छिड़काव करेंगे तो फूल एवं फलन जो है आगे चल के लगने वाला है वो अच्छा होगा। और अगर अच्छी फसल है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 052-34 आप इसमें स्प्रे कर दें तो और अच्छी आपकी फसल और उत्पादन अच्छा हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने टेलीफोन लगाया। और अभी भी हमारे कई किसान श्रोता लाइन पर है लेकिन वक्त की पाबंदी होती है डॉक्टर साहब, इसलिए हमें कार्यक्रम को यहीं पर जो है विराम देना पड़ रहा है। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, आपने बढ़िया हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, उनकी हर समस्या का निदान किया, आप यहाँ पर आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय हमने रखा था जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विजय अग्रवाल जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, प्रसारण सहयोगी दुर्गेश दुबे, उद्घोषक प्रेम शरण खेमरिया। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और रेणु टोप्पो ने। अब महेश सोनी को दिया गया नमस्कार।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
1: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
2: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
2: अतीत में जब भारत

0: दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
0: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
0: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने

0: देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
1: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
0: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर

0: विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं वार्ड मुरहरी के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आए। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आए, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर पीएमएस पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब

से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है।

0: की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका एनपीए नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
2: जी, क्या नाम है आपका?
3: हेमलता सूरवंशी।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
3: 2024 पे।
2: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
3: 10,000 का।
2: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
3: जनरल स्टोर पे।
2: तो उससे फायदा है आपको?
3: जी।
2: क्या लाभ मिला आपको उससे?
3: उससे भी हमारी छोटी दुकान थी, उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाते जा रहे, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। पीएम स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
4: जी नमस्कार। जी
2: क्या नाम है आपका?
4: मेरा सदन कुमार मालवी।
2: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
4: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
2: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
4: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इससे। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया, तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफ़ी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना, योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
1: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना कोलेन्द्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।
5: नगर विकास की, नए प्रयास की।

0: नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। रात के 8:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम था फिर कब मिलोगी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र की रचना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। प्रोफेसर फिल्म के लिए संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी की शब्द रचना OP नैयर की बनाई तर्ज पर। कश्मीर की कली फिल्म के लिए स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक गीत, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी सागर है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में

0: प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के

0: दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं यसुदास का गाया स्वामी फिल्म का एक गीत। पसंद करने वाले श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की फरमाइश पर। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुब्बर, रशिका रॉबिन, विवेक रामदास, शिवा शिवांशु, अवधेश, यश प्रेम नारायण, सुजीत रमेश कठोदिया, पंडित रमाकांत दुबे और प्रमोद सैनी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, सभी की पसंद पर सुनवा रही हैं लता मंगेशकर को फिल्म मनमौजी में।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
8: मन चाहे गीतों के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत फिल्म बॉबी से। पसंद करने वाले श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी, अनय अनाया और ईशु बाबा, शीतल चौक खंडवा से विशाल सिंह और विवेक सिंह, सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। इसे हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से। ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत। इन सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: साढ़े ग्यारह बजे तक
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, मन चाहे गीतों के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की फरमाइश। मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, विवान मिगलानी और वीर सिंह लहटी, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव डॉली बेबी, पूजा राधिका प्रभा देवी, मास्टर अल कबीर, पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा, सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म से एक गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। रात के 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेंद्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्म शती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आए।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की गिरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता। वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं हैं। सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल। यादें जिनमें दर्द भी है, तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छाया गीत में थे तलत महमूद के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: तेरी आँख के आँसू पी जाऊं,
0: फिल्म जहां आरा।
1: शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम।
0: फिल्म फुटपाथ।
1: मेरे दिल कहीं और चल।
0: फिल्म दाग।
1: अंधे जान के अंधे रास्ते जाए तो जाए।

और फिल्म वली आजम। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार। मेरी

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

प्यार पे सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिले